FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 की अश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्

0: गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधामोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है मदद की भावना।

में प्रशंसा से नहीं सेवा से दर्शाया जाता है। जीवन प्रेम है और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। ये सभी पंक्तियाँ जीवन में ही बहुत बार सबने सुनी है, लेकिन

0: जीवन में इन्हें अपनाया कितनी बार है, ये बहुत आवश्यक है। अच्छी बातें फूलों की खुशबू की तरह होती है, बहुत समय तक हमारे साथ साथ रहती है और यही चीज उनका जीवन में अनुसरण करने का कारण भी बनती है। हमारे विचार ही हमें महान बनाते हैं। मनुष्य समाज में रहता है और हर दूसरे पल उसे किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में जब मनुष्य के मन में दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने वही मदद करने की भावना पैदा हो जाती है तो वो मनुष्य मानवता के सबसे बड़े स्तंभ पर खड़ा होता है। दूसरों की मदद का भाव हर धर्म में है। सभी के साथ दया भाव दिखाना और उनसे प्रेम करना धर्मों ने सिखाया है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल वही व्यक्ति कृतज्ञता से भर नहीं जाता बल्कि ईश्वर भी मदद का हाथ बढ़ाकर पहल करने वाले से प्रसन्न होता है। और ये एक करने का फल है कि जब कभी आप मदद को पुकारते हैं तो कोई न कोई हाथ आपकी ओर भी अवश्य बढ़ता है। दूसरों की मदद हमेशा निस्वार्थ भाव से कीजिए और देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि देगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आनंदी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम

0: सामूहिक स्वर में देशागान के साथ ही वंदना का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमीर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की 201वीं कड़ी। कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और संगीतकार हैं सतीश भाटिया।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोली, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं। आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस। भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिनभर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम खेती निपात। प्रातः 6:50 पर समय होगा आदिवासी लोक संगीत का।

सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:30 पर, क्षमा करें सुबह 9:10 पर और सुबह 11:30 पर।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर और रात्रि 10:20 पर। बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बच्चों के मुख से आप सुनेंगे ठीक शाम 5:05 पर और कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय रहेगा ठीक शाम 7:00।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीनी बात।

0: रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: इस लोक भजन के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मानस त्रिवेदी से कहानी। कहानी का शीर्षक है वीरान घर।
1: कहानी का शीर्षक है वीरान घर। कुछ दिनों पहले की बात है, एक हंसता मुस्कुराता घर आज वीरान पड़ा है। जहां कभी पूरे गांव के बच्चों का मेला लगता था, आज वहां बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं एक माई बाप। यह कहानी कृष्णकांत और उनकी पत्नी सविता की है। आज दोनों ही अपने बेटों से मिलने उनके शहर गए हैं, जहां वे अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर को अपना बनाए बैठे हैं। जहां पर अपना कोई नहीं, बस 3 कमरे में ही पूरा संसार विद्यमान है। उनके 3 कमरों में बेटे और उनकी पत्नियां, बस वे 4 ही हैं। आसपास लोग तो हजारों की संख्या में हैं, पर किसी को कोई नजर नहीं आता है। वीरान सड़के, वीरान पड़ी सोसाइटी और वीरान पड़ी मन मस्तिष्क है। आज रविवार है, जिस कारण बेटों की ऑफिस से छुट्टी है और सब ही घर पर है। घर पर

ही है। इसका अर्थ है वह सभी आज फ्री है। घर पर का अर्थ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका घर ही ऑफिस है, मतलब घर पर बैठे बैठे ही लैपटॉप खोला और ऑफिस चालू हो गया। यहाँ पर सब्जियों के लिए भी बाहर नहीं जाना होता, सब्जियों के लिए किसी भी वस्तु के लिए बाहर नहीं जाना होता, सब वस्तुएं घर बैठे ही आ जाती है और अगर कुछ भेजना भी हो तो वहां बैठे बैठे ही हो जाता है। पूरा दिन उन्हीं कमरों में बैठे बैठे ही बीत जाता है। कहीं बाहर भी जाना हो तो लंबी कतारों में बैठे बैठे ही निकल जाता है। खास बात यह है कि अगर किसी से मिलना हो तो उससे पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। यह आधुनिकता है, पर इस आधुनिकता ने हमसे बहुत कुछ छीना है। इस घुटन भरी जिंदगी से बेचैन होकर कृष्णकांत दो दिन में ही घर वापस आ जाते हैं। आज कृष्णकांत अपने घर के उद्यान में बैठे बैठे सोच रहे हैं कैसा था यह घर। कृष्णकांत कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। यह घर लगभग आज से 25 साल पहले बन रहा था, जहां उन्होंने अपने बच्चे इसी घर में रहेंगे यह सोचकर सारे सुख सुविधा युक्त एक बहुत बड़ा बंगला बना। कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। हर एक वस्तु को सोच समझकर करवाने वाले और भविष्य की हर जरूरत को मद्देनजर रखकर कृष्णकांत ने यह घर बनवाया था। तब के समय वह राजमहल से कम नहीं था। यह 3 मंजिला बंगला है। तब के समय पूरे गांव का सबसे ऊंचा घर था। मुख्य द्वार से आते ही दाई ओर बना एक बड़ा सा उद्यान है और उसके बाई ओर पार्किंग है और वहीं से जाता है उनके घर के अंदर का मार्ग। प्रथम तल पर ही एक बहुत बड़ा किचन, कृष्णकांत का ऑफिस, साथ ही एक बड़ा सा हॉल और कृष्णकांत और सविता का एक बड़ा सा बेडरूम है। द्वितीय तल पर दोनों बेटों के अलग अलग कमरे तथा एक बड़ी सी बालकनी है जहां से उस समय पूरा गांव दिखता था। कृष्णकांत की सुबह वहीं चाय और अखबार से हुआ करती थी और तृतीय तल पर एक छोटा सा सिनेमा हॉल और वहीं पर स्थित है जिम। गांव के हर आदमी का उस घर से कोई ना कोई रिश्ता था। कोई सब्जी लेकर आता था तो कोई खेत में उगे हुए देशी गन्ने और पता नहीं क्या क्या उस बंगले में गांव से नहीं आया था, अर्थात सब कुछ ही आया था। पूरे गांव का उस घर से रिश्ता था क्योंकि कृष्णकांत भी सभी का ध्यान रखते थे। उनका कोई परिवार नहीं था पर पूरा गांव ही उनका परिवार था। ज्यादा उम्र वाले सभी दादा दादी, काका काकी और समान और छोटी उम्र वाले सभी भाई बहनें थे। बहनें तो इतनी थी कि रक्षाबंधन में कृष्णकांत की कलाई छोटी पड़ जाती थी। कृष्णकांत भी सभी के लिए कोई न कोई एक त्योहार पर पूरे गांव को भोजन करवाता था। सविता के लिए भी यह पूरा गांव ही ससुराल था। जब वह शादी करके पहली बार इस गांव में आई थी तब पूरे गांव ने उसका स्वागत किया था। किसी ने आशीर्वाद देकर तो किसी ने आशीर्वाद लेकर स्वागत किया। गांव की सबसे बड़ी औरत ने तिलक लगाकर और बाकी सब ने मिठाई खिलाकर गांव में प्रवेश दिया था। आज भी उसे याद है, कुमकुम की थाली में पांव रखकर घर में प्रवेश दिया जाता है, पर यह रस्म उसकी घर में न होकर गांव के प्रवेश द्वार पर हुई थी, क्योंकि कृष्णकांत का पूरा गांव ही घर था। सबसे उसको बहुत ही लगाव था। उस समय घर में कोई नौकर भी रखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि गांव का कोई न कोई व्यक्ति मिलने के बहाने आता और मिलते मिलते काम में हाथ भी बटा जाता था। ये उस समय की घनिष्ठता, मित्रता, भाईचारा सब ही था। गांव में कोई कृष्णकांत से मिलने आता और उनके घर के रास्ते के बारे में पूछता तो लोग उनसे यही कहते, हमारे घर जाना है क्या? एक से पूछा, दो से पूछा, सबने यही कहा, हमारे घर जाना है क्या? तो आने वाला भी असमंजस में पड़ जाता था और वह घर पहुंचकर कृष्णकांत से एक सवाल जरूर पूछते थे, आपके घर में कितने लोग रहते हैं?
कृष्णकांत भी हंसकर जवाब

0: देते, इस गांव में जितने लोग हैं सभी मेरे घर के लोग हैं। धीरे धीरे उस घर का नाम हमारा घर ही पड़ गया और धीरे धीरे यह घर जिले में विख्यात हो गया। वह उद्यान जहां कोई न कोई बच्चा दिन भर रहता ही था और शाम को तो लगभग 50-60 बच्चों का सैलाब लगता था, इन सभी बच्चों को देखकर कृष्णकांत और सविता बहुत ही खुश हुआ करते थे। वे कभी न कभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते थे। वे सभी बच्चों को अपना ही समझते थे। बच्चे भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। कोई उन्हें चाचा चाची तो कोई उन्हें ताऊ ताई कहता था। बच्चों तथा बड़ों के लिए आज तक भी उस घर का द्वार कभी बंद नहीं हुआ, रात को भी नहीं। यह ही इस घर का आश्चर्य है। आज देखते हैं तो वहां कोई बच्चा नहीं, यहां तक कि खुद के बच्चे भी वहां नहीं रहते। अब गांव के अन्य जन भी कभी कभार ही आया करते हैं, पर आया जरूर करते हैं। बाहर कहीं मिल जाते हैं तो नमस्ते आदि की क्रिया जरूर करते हैं। अब हमारा घर केवल कृष्णकांत का हो गया। जहां ऊपर बालकनी में सुबह की चाय पिया करते थे, वही आज कृष्णकांत को ऊपर के दर्शन किए कई साल हो गए। वह और सविता ऊपर जाते ही नहीं, जाते हैं तो केवल उनके नौकर, वे भी केवल साफ सफाई के लिए ही जाते। उनके घर में अब भी रहते 5 लोग हैं, पर फिर भी घर अधूरा सा ही। वे 5 लोग हैं कृष्णकांत, सविता और उनके 3 नौकर। कृष्णकांत ने 25 साल पहले जिस अरमान से एक एक ईंट रखवा कर घर बनवाया था, आज उसके वे सारे अरमान बिखर चुके हैं। बचा तो सिर्फ ईंटों का बना एक घर। आज कृष्णकांत बैठे बैठे विचार कर रहा है, क्यों पढ़ाया मैंने बेटों को इतना कि उनका घर भी अब उनका नहीं रहा है। आज दोनों बेटे अच्छी धनराशि कमा रहे हैं, लेकिन वे दोनों भी अधूरे हैं और हम भी अधूरे हैं। हाँ, पूरी हुई है तो बस एक पढ़ाई। उनके मन में विचार आ रहा है कि क्या पढ़ाई पूरी करना दूसरे को अधूरेपन की सजा देता है, सबसे अलग कर देता है, अपनों से अपनापन छीन लेता है। इस द्वंद ने मन को झकझोर दिया है। पढ़ाई करनी आवश्यक है, पर इतनी आवश्यक है कि न जाने और कितना हमें दुख देगी। कई विचार उसके मन में आ रहे हैं। उसमें एक विचार यह भी आ रहा है, क्यों बनाया इतना बड़ा घर, क्यों इतनी मेहनत की, केवल धूल खाने या केवल नौकरों के लिए, जिनके लिए अरमानों के साथ घर संजोया था, वह न जाने कहां कहां धक्के खा रहे हैं। जहां रहते हैं वह जगह यहाँ के 2 कमरे के बराबर भी नहीं है। कई साल हो गए हैं जब बेटे इस घर में अब हफ्ता भर भी रहे हैं। आते हैं 2-3 दिन रुकते हैं और चले जाते हैं, जैसे खुद के घर में ही मेहमान हो। ये सोचते सोचते कृष्णकांत बच्चों के दूर होने का दुख, अपने अरमानों पर पानी फिरने का दुख, बीते वक्त की यादों के साथ अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं।
1: अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम वातायन। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी को सविता सिंह का नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप कर

0: निकल गई थी उस तरह हमारी, पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर।

0: तराना फिल्म का गीत आपने अभी सुना, शैलेंद्र सिंह और उषा खन्ना की आवाजों में। तिलक राज ने इस गीत को लिखा था, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है कि बहुत छोटा सा एक अंतराल लिया जाए, उसके बाद फिर से उपस्थित होंगे।

0: आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मेरे सनम फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: मेरा अरमा भी रह जाए, हाय हमदम मेरे।
1: मेरे सनम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे ओपी नैयर। लीजिए अब सुनिए सांझ को आज नहीं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। कुलवंत जानी ने गीत लिखे हैं, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई।

सांच को आज ने इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थी उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, कुलवंत जानी की बोल थे राम लक्ष्मण का संगीत। और इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार की ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय,

0: और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
4: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक

0: स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केन्द्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4वें स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है गोल्डन 5 के साथ 4वें स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान

0: जापान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ौती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ौती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मां ही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से। मैं हूं हीना जैन, आपकी दोस्तों रेडियो होस्ट। स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है एक ऐसी चीज जिसे हम रोज मिलते हैं लेकिन शायद ही कभी उससे बात करते हैं। वो है दर्पण, यानी कि आईना। सुबह उठते ही हम आईने के सामने जाते हैं, बाल ठीक करते हैं, चेहरे को देखते हैं, कपड़े संवारते हैं, कभी चेहरे पर मुस्कान देखकर दिन शुरू करते हैं तो कभी आंखों के नीचे थकान देखकर समझ जाते हैं कि नींद कुछ कम हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है या कुछ और भी? आईना हमारे चेहरे की तस्वीर दिखाता है लेकिन जीवन का दर्पण हमारे व्यक्तित्व की तस्वीर दिखाता है। एक छोटी सी बात, आईना चेहरा दिखाता है और समय इंसान के मन का चेहरा दिखाता है। तो आइए आज के इस सफर में हम बाहर के दर्पण से भीतर के दर्पण तक चले और शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, दर्पण की सबसे पहली पहचान है वह हमें वैसे ही दिखाता है जैसे हम उसके सामने खड़े होते हैं। हम मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा, हम उदास होंगे तो उदास ही दिखाई देगी। दर्पण कभी हमारे चेहरे को सुंदर बनाने का दावा नहीं करता, वह बस हमें जैसा है हूबहू वैसा दिखाता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दर्पण की तरह होते हैं। वे हमें हमारी अच्छाइयां भी बताते हैं।

और हमारी कमियां भी। मां का एक वाक्य, बेटा तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो, कई बार हमारे मन का आईना बन जाता है। किसी दोस्त का कहना, तुम पहले जैसे खुश नहीं रहते, हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों को संभाल कर रखिए जो आपकी तारीफ ही नहीं, आपकी सच्चाई को भी आपके सामने दिखाए। क्योंकि जो हमें सिर्फ अच्छा दिखाए वह प्रशंसक हो सकता है, लेकिन जो हमें बेहतर बनाए वो सच्चा अपना होता है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं अगला प्यारा सा गीत।

दोस्तों, चेहरे के सामने तो हम रोज आईना रखते हैं, लेकिन अपने मन के सामने कितनी बार आईना रखते हैं? हम दूसरों के व्यवहार को बहुत जल्दी परख लेते हैं, किसने क्या कहा, किसने कैसा व्यवहार किया, किसने हमें महत्व दिया और किसने नहीं दिया। लेकिन कभी खुद से पूछा है, मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूं? किसी को दुख देने से पहले अगर हम एक पल अपने भीतर झांक ले तो शायद बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाए। कभी कभी समस्या सामने वाले में नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में होती है। कभी हमारा गुस्सा रिश्ते में सबसे बड़ा हो जाता है, कभी हमारा अहंकार प्यार से बड़ा हो जाता है, कभी हमारी अपेक्षाएं हमारी खुशियों से बड़ी हो जाती हैं। ऐसे समय में जरूरत होती है एक ऐसे दर्पण की जो चेहरा नहीं चरित्र दिखाए, और वो दर्पण है आत्मचिंतन। रात को सोने से पहले सिर्फ ये मत सोचिए कि आज लोगों ने आपके साथ क्या किया, एक बार ये भी सोचिए कि आज मैंने लोगों के साथ क्या किया। शायद यही सवाल हमें हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बना सकता है। दर्पण में चेहरा देखना आसान है, मन में झांकना कठिन, लेकिन जो मन में देख ले वही खुद को पहचान पाता है। आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हमारे रिश्ते हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं। हम जिस तरह दूसरों से बात करते हैं, जिस तरह अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह बच्चों को समझते हैं, अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं, वही हमारे संस्कारों की तस्वीर है। कई बार हम कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन शायद कभी हमें यह सोचना या देखना चाहिए कि क्या हम उनकी बात सुनते हैं। हम चाहते हैं कि घर में सब हमें सम्मान दे, लेकिन क्या हम दूसरों को सम्मान देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी भावनाएं समझे, लेकिन क्या हम किसी की भावना को समझते हैं। रिश्ते एक तरह का आईना है। हम उनमें जो देते हैं कई बार वही किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इसलिए रिश्तों के आईनों को साफ रखिए, उस पर अहंकार की धूल मत जमने दीजिए, गलतफहमियों की परत मत चढ़ने दीजिए। कभी कभी बस एक छोटी सी बात, मुझे माफ कर देना या तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, रिश्तों के आईनों को फिर से चमका देती है। इसलिए जब अहंकार आगे आए तो एक बार रुकिए, सोचिए कि उस व्यक्ति का प्यार ज्यादा मायने रखता है या अपनी बात का अहंकार। अगर आपके बीच प्यार सच्चा है तो आपकी सही बात सामने वाला इंसान जरूर समझेगा, और अगर आपका प्यार सच्चा है तो शायद आप भी उस बात को जरूर समझेंगे। बस एक बार मन के आईने में झांक कर देखिए, प्रेम या अहंकार क्या जीतना चाहिए। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, समय भी अपने आप में एक दर्पण है। बचपन में हम आईने में खुद को देखकर खुश होते थे, फिर किशोरावस्था आई, चेहरे, बाल, कपड़े, व्यक्तित्व सबको लेकर सजग हुए। फिर जिंदगी आगे बढ़ी, चेहरे पर जिम्मेदारियां आई, आंखों में अनुभव आया, बालों में कुछ सफेदी आई, चेहरे पर कुछ रेखाएं आई। लेकिन दोस्तों, ये रेखाएं सिर्फ उम्र की नहीं है, इनमें किसी मां की जागी हुई रातें हैं, किसी पिता की मेहनत है, किसी इंसान के संघर्ष हैं, किसी रिश्तों की कहानी है, किसी सपने के लिए की गई मेहनत है। इसलिए उम्र के साथ बदलते चेहरे से घबराइए मत। हर झुर्री एक कहानी है, हर सफेदी एक अनुभव है और हर बदलता चेहरा जिंदगी के सफर की निशानी है। सुंदरता सिर्फ चेहरे की चमक में नहीं होती, कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में देखिए, वहां आपको पूरा जीवन दिखाई देगा। कभी मां के हाथों को देखिए, वहां आपको परिवार की पूरी कहानी मिल जाएगी। कभी पिता के चेहरे को ध्यान से देखिए, वहां आपको जिम्मेदारियों का पूरा इतिहास दिखाई देगा। चेहरा बदलता है, लेकिन प्रेम की चमक उम्र के साथ और गहरी हो सकती है।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक दर्पण चेहरे के लिए होता है और एक दर्पण अपने मन के लिए जरूर रखें, जो साफ साफ सब कुछ आपको दिखा सके। और आप में इतनी क्षमता लाइए कि आप अपने मन को और अपने मन के दर्पण को साफ साफ देख सके और उसके अंदर जो दिखता है उसे सच्चाई के साथ अपना सके। इन्हीं बातों के साथ मैं हिना जैन लेती हूं आप सभी से इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज में गाए कुछ राजस्थानी गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।

0: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
0: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुरक्षा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार गोडावण संरक्षण के लिए प्रयासरत। और जापान में चल रहे एशियन 26 के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाल सुरक्षा को राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में कानूनी सहायता और बाल संरक्षण तंत्र को तत्काल मजबूत करने की आवश्यकता है। श्री मेघवाल कल हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के सम्मेलन में बोल रहे थे। सम्मेलन का विषय ऑनलाइन यौन शोषण की रोकथाम और बाल हितैषी न्याय को मजबूत करना था। श्री मेघवाल ने युवाओं के सामने बढ़ते डिजिटल खतरों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें ऑनलाइन ग्रूमिंग, बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक और प्रौद्योगिकी आधारित शोषण शामिल है।
2: हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है। बच्चों के इसी संदर्भ में आर्टिकल 39E और 39F भी उनके संरक्षण, गरिमा तथा विशेष उपायों का संवैधानिक आधार देते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सुरक्षा केवल कानून की पुस्तक में नहीं, बच्चे के दैनिक जीवन में भी दिखाई दे। आज की थीम के परिप्रेक्ष्य में न्याय की ये यात्रा केवल जजमेंट पर समाप्त नहीं होती, फैसले के आगे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को काउंसिलिंग, आवश्यक हेल्थ केयर, शिक्षा की निरंतरता, विक्टिम कंपनसेशन और सुरक्षित रिहैबिलिटेशन से भी जोड़ा जाए।
1: साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने बाल संरक्षण के लिए न्याय की सुगमता के 3 आयाम प्रस्तुत किए। इनमें समझने में सुगमता, सहभागिता में सुगमता और कार्य करने में सुगमता शामिल है। श्री मेघवाल ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नालसा की कानूनी सेवा इकाइयों, टेली लॉ और न्याय बंधु जैसी पहलों के माध्यम से न्याय तक पहुंच को सरल बनाने पर जोर दिया। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। 8 अक्टूबर को इसकी लोक सूचना जारी होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर, दूसरे का 29

0: 31 अक्टूबर, तीसरे का 4 नवंबर और चौथे चरण के वोट 14 नवंबर को डाले जाएंगे। वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए 25 और 31 अक्टूबर तथा 6 और 16 नवंबर को मतदान होगा। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मत पत्रों से होंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में जैसलमेर और फलौदी में वोट डाले जाएंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 18 लाख से अधिक वोटर होने के कारण चुनाव 4 चरणों में होंगे। पंचायत चुनाव के लिए कुल 4,03,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन चुनाव के जरिए 1,55,000 जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि ये चुनाव 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में होंगे। वोकल फॉर लोकल के संकल्प को धरातल पर उतारने और उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए पाली में आज उद्यमियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन होगा। लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित इस अधिवेशन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई दिशा देने के लिए चर्चा की जाएगी। इसमें राज्य भर के 1,200 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और ऋण सहायता सहित विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान चूड़ी बनाने, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण और कुल्हड़ बनाने जैसे विभिन्न उद्योगों की जानकारी दी जाएगी। इससे विभिन्न जिलों के उद्योगों के बीच कारोबारी नेटवर्क मजबूत होगा। नए बाजार के विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर से चल रहे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में मेजबान भारत के साथ साथ 30 से ज्यादा देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मित्र राष्ट्रों की वायुसेनाएं अपने अपने लड़ाकू विमानों और सैन्य कर्मियों के साथ सीधे हिस्सा ले रही हैं। भारतीय वायुसेना के अनुसार यह संयुक्त फॉर्मेशन विभिन्न देशों के बीच आपसी विश्वास, सटीकता, रक्षा और भाईचारे का संदेश है। इस आयोजन का मुख्य संदेश पावर इन पार्टनरशिप यानी साझेदारी में ही शक्ति है। ये युद्धाभ्यास 12 अक्टूबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण की दिशा में एक और पहल करते हुए कल जैसलमेर के रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि गोडावण सहित प्रदेश की अनमोल वन्य जीव विरासत सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रूप में पहुंच सकें। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि पिछले एक दशक में गोडावण संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति आज वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण बन चुकी है। गोडावण संरक्षण कार्यक्रम की सफलता राज्य सरकार, वैज्ञानिकों, वन विभाग तथा स्थानीय समुदायों की सार्थक कोशिश का नतीजा है। वन तथा पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पक्षी गृह में गोडावणों का प्राकृतिक माहौल में संरक्षण किया जाएगा।
1: अब तक गोडाउन का संरक्षण क्लोज ब्रीडिंग सेंटर में किया जा रहा था। अब इस एवियरी के जरिए उन्हें धीरे धीरे जंगल में वापस फंसाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राकृतिक परिवेश में छोड़ने के बाद गोडाउनों की गतिविधियों, आवास के इस्तेमाल, व्यवहार और जीवित रहने की क्षमता पर वैज्ञानिक निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सेटेलाइट टैग और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। गोडाउन को केवल एक दुर्लभ पक्षी ही नहीं बल्कि थार के ग्रासलैंड इकोसिस्टम का प्रमुख संकेतक भी माना जाता है। मनीष, आकाशवाणी समाचार जैसलमेर।
0: आज विश्व पशु दिवस है। ये दिन पशु कल्याण मानकों में सुधार करने तथा विलुप्त हो रहे प्राणियों की रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम उनकी नजरों से दुनिया देखें रखी गई है। ये दिवस पशु संरक्षण से प्रकृति के संतुलन तक सह अस्तित्व का संदेश देता है। पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए उनके साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा

0: तथा अमानवीय व्यवहार को सामाजिक चेतना विकसित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से पशुओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्रति करुणा भाव बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समारोह नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। समापन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वह तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इन खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इस बीच इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग एशियाई खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रणवी उर्स को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। प्रणवी इस लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी बनी हैं। इसके अलावा लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। ये पुरस्कार इस इवेंट में भारत का पहला मेडल जीतने में तीनों की सामूहिक उपलब्धि को सम्मान देने के लिए है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IGPL की ओर से औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाल सुरक्षा को राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग बताया। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य पक्षी गोडावण संरक्षण के लिए रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री और जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का समापन आज। भारत कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। FM बैंड 101.3 MHz पर प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

0: सारे हैं।
1: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

0: कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिल उठते हैं तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: मेरा लगे रे चली क्या हो अब आगे रे।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।
1: सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: बदल ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन के

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: हाय हाय,
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
3: तो स्वागत है आपका।
2: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
3: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
2: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या है ये, मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात। अभी भी मैं

0: क्लास ही हूँ,
1: जी
0: वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क।
1: जी
0: खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप
1: गैप।
0: आया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी ना बड़ों
1: और ये
0: में।
1: दौर बड़ा मुश्किल होता है
0: बहुत
1: कलाकार
0: मुश्किल,
1: के
0: बहुत
1: लिए।
0: मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा। उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना। नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, में जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल।
0: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से, उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं, वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया, मोरया गजानना मोरया गजानना सुख दे सकल जना, ऐसे।
1: जी
0: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले, उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी जी
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका,
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या। तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था
1: ठीक
0: उनका,
1: है
0: कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा,
1: श्रेष्ठ है।
0: एकदम से क्लिक हो
1: हाँ
0: जाएगा।
1: हाँ
0: पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए, उसका तो कोई इलाज ही नहीं
1: हाँ
0: मंदाकिनी जी।
1: हाँ
0: तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं,
1: जी
0: मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही। तो कहा छोड़ सुषमा, छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में 2 पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म, उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे।
1: जी
0: तुम

0: भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती है। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना। तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तू तू तू तू तारा में हमें दिखाई देती है ना, और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा मंदाकिनी जी। ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
1: मानती हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गाती है।
1: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगी।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
0: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज,
1: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो बाल है, बाल मन था,
1: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे

0: तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के
1: जी,
0: लिए,
1: जी.
0: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब्बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
1: जी.
0: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला। हाँ, लेकिन क्या होता है, उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
1: जी,
0: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी
1: प्रोफेशनल <आपकी तरफ से? laughs>
0: प्रोफेशनल साजिश थी
1: जी,
0: कि भाई
1: जी.
0: मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी
0: है तो।
1: है तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: जी. एक अलग रूप से जी पाती,
0: से जी
1: संगीत
0: पाती
1: को,
0: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तू तू तू तू तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन, बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना? हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना? क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना? तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलू मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी,
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से। और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी।
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी
1: नहीं करेंगे। पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पास।
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: कभी।
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तू तू तू तू।
0: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना।
1: जी जी।
0: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बिताए, तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रेटजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी।
1: जी
0: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी, किसी ना किसी तरह मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा,
1: है ना। सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतू तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतू तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा, वो वाला। तो उसमें मैं

0: मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी के जी
0: मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे और गीतादत्त जी का स्टाइल, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतू तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए, हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, है ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ,
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं, वो तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है
1: जी,
0: तो उनका, उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना
1: जी,
0: वो एक अलग टाइप की।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित की करियर हाँ, का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: है ना?
1: और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए।

0: दाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही थी, है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये एक अजीब बात है। हाँ, कि करिश्मा को मेरी इनफैक्ट काजोल को भी वो मिस्टर लोभा लोभा। मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
1: क्या बात,
0: किसी और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो एक्सप्रेशंस, मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना कितना, तो मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है वो आदमी, इंसान
0: भी बेकार है। देखिए, करिश्मा का एक अजीब एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया। छोड़िए, खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हैं, वो हम पर छोड़ देते हैं।
1: जी, जी, जी।
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात है,
0: तो ये सब हमारे इनपुट्स
1: जी, बिल्कुल,
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होती है। सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक की खुद की जो IQ है उसका जो
0: बहुत कम
1: है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा रही है उसे पकड़े, मतलब लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही है ना,
0: बिल्कुल।
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है, पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम बढ़ा।
1: तो आप कहें तो यही गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक लिया जाए,
0: प्लीज, प्लीज,
1: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे,
0: प्लीज।
1: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने में गाती थी कि

0: की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने मैं गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
1: जी,
0: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफकोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड,
1: आई एम
0: वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
1: जी,
0: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही
1: हूँ, जी, जी,
0: इतना भी किसको मिलता
1: है। बिल्कुल, और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
0: जी
1: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि मुझे वो गाना मिल जाता।
0: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदा के नीचे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
1: बिल्कुल,
0: हमारा
1: बिल्कुल,
0: बुरा कभी नहीं सोचेंगे।
1: और उन्होंने सोचा भी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तभी आज पूर्णिमा के नाम से जानी
0: बहुत
1: जाती है।
0: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ
1: जी।
0: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आज ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं। जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
1: जी,
0: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझेत पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला कुठला

0: क्या बात है, क्या बात
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा। पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूं, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी। अभी ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूं, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास। वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते हैं, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है। सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूंगी जी। ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
0: ये बड़ी बात है।
1: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदाकिनी जी। वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले, बताइए।
1: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेलके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
0: जी,
1: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
0: जी।
1: किल बिल पक्षी बोलती।

0: गाने बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से बहुत ज्यादा, लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
1: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि बंगाली, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी आपने गाया।
0: बिल्कुल।
1: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
0: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं
1: जी, God
0: पर
1: gift.
0: ये गॉड गिफ्ट, ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था। वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी, तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आया, जब मैंने जब रिमिक्स की बात की ना, नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है, ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है। ऊंची है बिल्डिंग टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बन है टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं टाडा रा रा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
1: अनु मलिक के साथ,
0: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए है ना, पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बन है।

0: डॉक्टर पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी, सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू धड़कन में तू, ओ मैं जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।

0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है. यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है. हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था. नींव उनकी, हम सबकी बहुत सॉलिड थी.
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना. अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है. एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं. उन बच्चों को, बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना. अब आप बोलो कि क्या रे तुम, अरे कैसे मना करेंगे. हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं. अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस. फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी, या हम दो, है ना. तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है.
0: माहौल वैसे ही था, वो गर्माहट.
1: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा. तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए. तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ.
0: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
1: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी. जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है.
0: जी,
1: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
0: तुला हुआ है.
1: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है.
0: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर,
1: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
0: वो सीखेगा कहाँ से आगे के लिए.
1: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना. मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे. आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
0: रातों रात स्टार,
1: इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो. तो हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
0: जी, ताकि आगे चलकर एक
1: उनको,
0: हाँ, करियर जो बनता
1: हर
0: है,
1: बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है. हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश कर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है. तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता समझदारी उसी में.
0: जी, एक गाना सुन लिया जाए.
1: कौन सा बताइए,
0: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है. हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं.
1: हकीयत मिला ले राजा, आए हैं दिन महार के, हकीयत चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के. मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी. उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही. मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए.
0: नहीं नहीं बिल्कुल,
1: पर आज का ये मौका मैं नहीं गवाना नहीं चाहती,
0: और हम भी मौका नहीं गवाना चाहते. तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं.

0: जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहां पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे वो भी इस गाने को सुनना पसंद करते हैं।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास है
2: स्टेज पे, यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है।

0: जी
1: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
0: अच्छा,
1: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी।
0: जी,
1: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
0: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
1: प्लीज, चने के खेत में।
0: अरे।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज की विविधा
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे, अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आ अब लौट चले से।

फिल्म संगीत की प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं सी। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज, समीर के बोल और अनु मलिक का संगीत निर्देशन। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दौड़ से। रानू मुखर्जी और सोनू निगम की आवाज, महबूब के बोल और ए आर रहमान का संगीत निर्देशन।

0: फिल्म संगीत की आखिरी प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म जुदाई से। गीत को गाया था हरिहरन और अलका याग्निक ने। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
4: भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष

0: बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मित ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सेंखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेंखो की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

वफादार है, तू यारों का यार है, कितना वफादार है। झूठा है सारा जहां, सच्चा तेरा प्यार है। तू पगला न पगला, तू पगला न पगला, सारी दुनिया गई है बदल। चल चल चल, चल।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में मैं सुंदर हूं इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर नीरज की रचना है शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई जरा देख के चलो।

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तेरे पैर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो।

0: जरा देख के चलो आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: ये श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है। भाई जरा

ショッピング。

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली।

0: हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।

शब्बीर कुमार की आवाज में एस एच बिहारी की रचना थी ये तेरी मेहरबानी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।

0: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
0: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: की थी। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

दोस्तों नमस्कार। किसी कोने पर, घर के किसी कोने पर सजा रेडियो विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम आ चुका है आपके रेडियो सेट तक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। आज की जो इबारत है दीवार, उसमें कुछ दीवारें बातें करती हैं और ये इबारत जो हमने फेसबुक पर डाली है वो एक बार आपके लिए पढ़े देते हैं श्रोताओं। ये दरो दीवारें जिनमें एक उम्र की कहानी होती है, कभी साथ बैठकर घुल मिलकर इन्हीं दीवारों के साए जिंदगी परवान चढ़ी। घर की ये दीवारें जिनसे कभी धूप तो कभी चांदनी को उतरते देखा था, चंदन की खुशबू की तरह आज भी आंखों में बसे हैं वो दिन वो रातें। कभी जुड़ते कभी टूटते रिश्तों की चश्मदीद हैं ये दीवारें। शादी ब्याह की धूम में साथ रत जगा भी करते देखा है इन दीवारों को। कभी प्यार कभी रंजो गम, कभी ढोल ताशे तो कभी शहनाइयों की धुन इन्हीं दीवारों में सिमट जाती थी। बचपन में जिन दीवारों पर चित्र बना देते थे, कभी जिनके सहारे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, कभी इनके साथ छुपा छुपी का खेल भी खेला। दीवारों से बने घर, उसी डर को भुला पाना आसान नहीं। माँ बाबा के घर से पिया के घर तक जाने के सफर की राजदार हैं ये दीवारें। सच सच बता ए दिल, क्या उसी दर को ढूंढती हैं आज भी ये आंखें जिनसे वादा था कभी लौट कर आने का। साथियों, हम जहां हैं आज, यह हमारा शुरुआती जीवन जिस घर में बीता, उनकी दरों दीवारों में आज भी समय की स्मृतियां हैं जो कहती तो कुछ नहीं लेकिन उनकी पुकार को हम सुन तो सकते ही हैं। दीवारों से मिलकर घर बनता है, कभी सीमेंट ईंट से तो कभी मिट्टी की दीवारें, लेकिन रिश्तों का सौंधापन साथ बैठकर रसोई में खाना खाना और दीवारों के सहारे ऊपर जाती वो छत। हम तो चले आए लेकिन यादें वहीं रह गईं। चलिए उन्हीं दीवारों के साए चलते हैं जिनकी मरम्मत का भी शायद समय आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास नहीं। वैसे दोनों दीवारों को दुरुस्त करने की कहां तक जरूरत है, एक जो मन में है और दूसरी जो घर में इंतजार करती है। तो लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

घर की दरों दीवारों की तरफ अगर लौटिए श्रोताओं, उनमें कान लगाकर सुनिए तो शायद यही दुआएं देती हैं दीवारें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। और तमाम जो बातें दीवारों के रहते जो घरों में होती हैं, यानी कभी अपने साथियों के साथ खेलना, कभी बिताया हुआ बचपन, कभी वहां की गई पढ़ाइयां, तो बहुत सारी यादें हैं। और हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारी यादें भी अपनी साझा कर रहे हैं, तो इन यादों को भी आप बांटते चले कार्यक्रम में तो क्या ही बात है। आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज में, और सारा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती है, घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नमाखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बनता हर मकान है, जहां प्रेम बसी वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती हैं। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बातें हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यही बातें हैं। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

सुमधन और देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इबारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाई नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार पे एक छोटी ताक थी जिस पर लैंप केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी जिसे शाम को जलाया जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती ये दीवारें, बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोखों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूं, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूं। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोता, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है। और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि कुछ यादें जो दीवारों से वाबस्ता हैं आपके पढ़ने की पढ़ाने की, या फिर किसी एक ताक पर रेडियो तो क्या रखा होता था और उसमें विविध भारती से कुछ आवाजें आती थी क्या।

जो सरकने लगा रुख से पर्दा जरा जो सर

हमारे श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की। महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहां मेरा जन्म हुआ आज भी गांव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूं। ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले और अब तो वैसे सब जगह ईंट और सीमेंट की ही पक्की दीवारें हुआ करती हैं, लेकिन आज भी देखने को मिलता है घर भले ही मिट्टी की दीवारों का हो लेकिन जो दिल की दीवारें होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो ऐसे घरों की जो यादें हैं वो आप जरूर हमसे ताजा करें। और क्या कभी आप अपने घरों में यानी पुराने घर में कभी लौट कर जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये भी हमें जरूर बताएं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो दीवारों पर कुछ ना नजर आए तो अच्छा लगता है। बच्चों को पहले हम न जाने क्या क्या हाथों से बनाते और लगा देते थे, कई तोरण बनाए हर साल दीपा दिवाली पर, कुछ नया सा तोरण अब सब बाजार में मिल जाता है।

पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और नहीं वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है, वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर सब छुप जाते होंगे और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं। आज वो सब तो नहीं पर हाँ काफी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ जरूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी जिंदगी बसती है। बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाजें, हंसी आंसू, त्योहार और न जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार।

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं। घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहां दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहां हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोता, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस

आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की पुरकशिश आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी है। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती है, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन है। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं, और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहां हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक खास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं जो हमें बड़ा खास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहां आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे। एक तो ये सवाल आपको बताना है, और आज विश्व पशु दिवस भी है तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ जो घर जहां से हम आए या पुराने घरों में, गांव के घरों में, वहां पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे। उनमें से कौन आपको प्यारा था, या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था, तो आप हमसे जरूर ये बातें ताजा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए, जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब न जरूरत पड़ती थी, न ही फोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा, ये पंखा नहीं होता था, और प्राकृतिक हवा जो होती थी, यानी प्रकृति की हवा जो होती थी, वो वही काम करती थी।

श्रोताओं, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी की ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़े हो जाते, बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है, ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था नाना जी का और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज सुनना, तो हम लोग न्यूज सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे हम लोग रेडियो खेलते थे, तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर, बड़ा मजा आता था। उन दिनों की आज याद पूरी ताजा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहां बचपन बीता, वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहां पानी की बूंदें भीगती तो सब भीगा भीगा सा लगता, वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपटकर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दिलवी का लिखा ये गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छोटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया। पुरानी यादों में खो गए क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठकर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं घर की बातें होती हैं वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत इन दीवारों की मरम्मत आपको जरूरी लगती है जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था। ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे जरूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुंचे जिस घर में आपको जाना था लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना। ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में

हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओ, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल की हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहां भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार तो कुछ तो बिखेर देता था वहां पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो।

वीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे श्रोताओ। तो कुछ न कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से जरूर किया होगा उनको दुरुस्त करने का, और ये वादा कि वहां लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

एक लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनके सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो न सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.

0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर

0: अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉ त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के दियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत

0: की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहित व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नख में। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओ दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोलते हैं रोशन का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है।

आकाशदीप, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद जफी की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: सुन जाना अखियां हमार हो चुभ जाना कुंदनिया मोरी कलैया सुकुमार हो चुभ जाना कुंदनिया मोरी कलैया सुकुमार हो चुभ जाना कुंदनिया।
1: आप सुन रहे थे लागी छूटे लागी नहीं छूटे राम सुन का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

की आवाज फिल्म तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तान पुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तरफ।

सी रामचंद्र की तर्ज साहिल ध्यानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था। सदाबहार नगमे ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रोताओं नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मनचाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मनचाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, तर्ज थी विनय अवस्थी ने। इस गीत को पसंद किया पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतनलाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने। इस गीत को सुनना चाहते थे काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की यह फरमाइश।

थी रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदानाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और इसी गीत को सुनना चाहते थे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप देखा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे, पारस पूजा, रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी जी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारी बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेन्द्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटान धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का। इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी, मौसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसर जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। ये फरमाइश थी ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन रौमा, अजरुद्दीन तमामुद्दीन रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचनगांव जिला वर्धा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबीता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेन्द्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था। और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए, भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
2: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
3: अनाम भैया, वो अनिल सुनाओ ना।
2: हाँ, जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूँ।

0: पूछो ना भैया।
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहाँ से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे अनाव, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ

0: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ, पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
0: इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
0: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ, ये मिस्टर बत्रा कौन है?
0: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
2: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
0: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
0: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
0: क्यों?
1: माँ, वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है
0: तो क्या
1: मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच, मुझे तुम याद आ गई माँ।
0: बेटे, तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थी, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की मां को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
0: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
0: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ, वो तो मुझे जानते ही नहीं।
0: जानते हैं, मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
0: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है।
1: माँ, माँ।
0: आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रहा माँ।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर बत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
1: होंगे मगर।
0: अनाम।
1: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगे तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
0: अनाम, अब तुम जवान और समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें। अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक

0: सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान माँ मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर ठीक है। बस बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा साहब, सो काइंड ऑफ यू।

बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बच्चा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: कुछ तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
2: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छे आदमी जरूर है अनाम।
3: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
2: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकालकर फेंक दो।
3: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और माँ अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपने नापसंदी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं है,
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
3: न माँ कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, माँ और बत्रा, बत्रा और माँ। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर माँ के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
4: आ, आ, आ, अनाम खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा।

0: जाकर सो जा,
1: चल
0: उठ कर हाथ मुंह धो,
1: हाथ मुंह धोकर
0: नाश्ता कर, चल स्कूल चल, नाटक
1: कर,
0: नाटक कर,
1: अच्छा
0: अभिनय कर, चल तू मुझसा तू हंस खुल कर हंस,
1: बाजा बजा
0: वायलिन बजा,
1: बस
0: बंद कर अब बंद कर, चल कहना मान
1: आज्ञा
0: मत डाल, खुश रह आंसू मत से,
1: खुल कर लो
0: खुल कर लो
1: खुल कर लो,
2: नहीं गा सकते मुझे बच्चा बहुत अच्छा आता है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आता है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आता है, अकेले ही जाना
1: चाहिए,
2: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा, मैं तेरे लिए बॉयज मार, मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
3: अनाम अनाम अनाम, क्या हुआ बेटे, क्या तुम डर गए थे, सपनों डरो मत बेटा, डरो मत,
4: हाँ माँ सपना था, सपना सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस ऋतु
1: और बजाओ ना नाम बजाओ।
0: बस ऋतु अब कल।
2: अच्छा अनाम भैया आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी पता नहीं ऋतु मेरी मम्मी कहाँ गई। तुम्हारी मम्मी तो है ना?
2: मेरी मम्मी घर पर है। आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं ऋतु।
2: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया मैं चलती हूँ।
3: अनाम ये वायलिन बंद करो पहले मेरी बात से।
0: सुन रहा हूँ।
3: मेरी बात तालों के तो नहीं?
0: क्या बात?
3: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
3: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
3: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
4: अनाम की माँ अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन ये है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी माँ के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
3: अनाम दिन भर से कहाँ गायब थे?
0: बाहर था।
3: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
3: देखो अनाम ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
3: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
3: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
3: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
3: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
3: ठीक है जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: माँ को माँ कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है, अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और बूझिल। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूँ, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया। कल रात को यहाँ नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए अनाम को यहाँ से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूँ। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली, पास हो गया है।
2: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात।
3: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
3: पता नहीं कौन निरंतर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
3: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर न

0: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
2: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
3: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
1: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
2: कहाँ है उत्तर?
1: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
4: अनाम भैया।
2: हाँ रितु।
4: वायलिन सुनाओ ना।
2: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगे, है ना?
4: हाँ चलो।

0: सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।
1: समुद्र के किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी इसी के साथ है।
0: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है, और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों सुन रही है।
2: भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था

वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस और फिर

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
1: जी।
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
1: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
1: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था, उन्होंने वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
1: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे,

0: जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
1: जी,
0: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
1: जी।
0: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
1: बाप रे बाप,
0: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
1: और उसमें खेलना और
0: कुछ नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 1/2 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होकर प्रैक्टिस करता था।
1: ओहो,
0: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पांव हिल गया।
1: ओहो हो,
0: तो ये तपस्या होती है
1: जी
0: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
1: बिल्कुल,
0: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
1: क्या बात है,
0: उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
1: वाह,
0: उसकी साधना।
1: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
0: परमेश्वर, तो यहाँ से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए।
1: जी जी,
0: मुझे फिल्म याद नहीं
1: जी,
0: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
1: बड़ी बात होती है,
0: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कव्वाल जो थे उन्होंने
1: जी,
0: दी
1: जी।
0: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
0: तमाम
1: प्रदेशों में,
0: कोई भी भाषा हो, अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो,
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
1: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
0: इतना काम।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
1: वाह वाह,
0: और 17,000 रूपये का घर था।
1: क्या बात है।
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में।
1: जी जी,
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
1: जी।
0: तो वो पहला घर था 17,000 रूपये का। 17,000 रूपये में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रूपये कर्जा था।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही रहे थे।
0: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
1: जी।
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी,
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
1: जी।
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया
1: जी।
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक डायरेक्टर,
0: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी,
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई।

0: लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
1: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार, इनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगल जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है
1: जी।
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर, जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ
1: जी,
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे।
1: नोटेशन
0: लिखना, टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशन
0: और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी,
1: में
0: जी,
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी,
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है
1: जी,
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं, क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक ओमी,
0: हाँ सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उस पे सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
1: जी,
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: वाह।
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वह लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
1: जी,
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
1: हाँ।
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनका लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, उन्होंने बताया पूरा सीन। 1.5 मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो।
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी सोनिक जी की,
0: क्योंकि ब्लाइंड थे। तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया. एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी. मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक. सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा. सुना ये कहाँ पे आ रहा है जी? यहाँ पे आ रहा है. अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज के म्यूजिक कैसा लगेगा वहां. ओके, टेक करो.
1: क्या बात है.
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है? नौशाद साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन ने. लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं.
1: जी जी जी.
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए. सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता. हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो, वो अलग बात है. अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने गाना बनाया.
1: जी,
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया. मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता.
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया.
1: अच्छा,
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ.
1: ओके,
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है.
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है. और उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ. जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा. अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी. म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर.
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आज शाम होने आई में
0: जी, जी.
1: हॉर्न की आवाज आती है.

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसको भी डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ है
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुनिए।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए सबके साथ और सबके साथ, बसंत साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पार्टी जी थे जिन्होंने काम किया, कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एसडी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: स्टाइल को फॉलो किया
1: जी। जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को। वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: से भी उन्होंने काम किया। क्या काम किया उन्होंने एज ए अरेंजर, उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया। तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ। बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी। जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं।

0: था
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनी प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था। हाँ। मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरविंद की पोस्ट बहुत बड़ी है जी, मैंने तो अरविंद की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए बम्बई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: 500 मीटर दूर थे। मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे। बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था
0: ये मुझे याद नहीं।
1: अरे
0: लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया
1: जी जी।
0: तो बोलते ये तो ठीक है, तो पहला म्यूजिक सुनाओ। फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया, उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम चार बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के चार नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये चार नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है
1: जी,
0: सबसे बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे।
0: ये कॉपी
1: के लिए परेशान,
0: किसी की कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो चार बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया
0: जी।
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एजेंट के लिए बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा।
0: हाँ, लेकिन हो नहीं सका
1: जी। सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे
1: जी।
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी
1: डैडी, मोपेट जी,
0: मोपेट डैडी ने 500 रूपये की या 450 रूपये की मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली।
1: हाँ।
0: हेराल्ड गाड़ी थी।
1: हेराल्ड
0: जो से निकल गई तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मेरे कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका, मैंने कहा अन्ना आप कहा? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहा बाइक में जा रहे? मैं कहता अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है
1: जी,
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप
1: जी जी,
0: आशीर्वाद आपको लेना पड़ता है
1: जी,
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी,
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी, और लगातार साथ रहा,
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए
1: जी,
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, कुछ यादें बांटिए।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया, मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो, वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन उनके साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे 9:30 बजे। सवा नौ बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी?
1: मनोहरी जी
0: 1,
1: बासु जी
0: 2,
1: के भूपी जी
0: 3,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ
1: 4, मारुति
0: 5,
1: देवीचंद
0: 6,
1: अमृत
0: 7,
1: होमी मुल्ला
0: 8,
1: और 1 चंद्रकांत
0: 9। गजब गजब।
1: ये 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे,
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
1: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना, रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: चंद्रकांत हो गया,
0: पूरी टोली का
1: काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा आता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी,
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: खाना खाते।

0: हैं,
1: ऐसी सुपर क्रिएटिव शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
0: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था, मैं केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था
0: जी,
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ चार पांच महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया था,
1: एक जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहां रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हो तो मैं खड़ा हो गया। पंचम जी, मैं पिछले छह महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी का गलती हुई थी केवीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस, अरे उत्तम आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था।
0: क्या बात है,
1: ही इज लाइक ए फ्रेंड एंड आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी।
0: वाह,
1: फिर मैंने कहा केबीएन। सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी जी जी।
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा, फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: जी जी। आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर।
0: हाँ।
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला
1: वायलिन सोलो का पीस था।
0: अच्छा,
1: सागर फिल्म।
0: जी।
1: तो जो वो कमलासन बजाता है।
0: अच्छा अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है।
0: हाँ।
1: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी जी जी।
1: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
1: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते
0: जी,
1: ना भी मारो टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है।
0: हाँ।
1: ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे।
0: जी जी।
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, ये तुम ये यहां से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो उन्होंने ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू टंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
0: स्नैप आ जाए,
1: तू हाथ से करना।
0: जी।
1: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये मैंने है
0: जी,
1: अभी ए,
0: हाँ,
1: ये साउंड है
0: जी,
1: ये चाहिए, तार टूट गई।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो की दो तीन रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
0: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
1: नहीं नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है, तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं, तो पंचम जी आए तो मैं पंचम था ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं डायरेक्टर बना तब मुझे समझ में आया वो
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: नहीं याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

कलाकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: करो वादा, हाँ जी वादा।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
7: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
8: हाँ।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे ही आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य कार्यक्रम, उनका समय।

अब से कुछ ही पलों में हमारे नन्हे श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम बच्चों के मुख से। सात बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार सात में जिले की चिट्ठी 6:30 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार 6:45 पर जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:30 पर डेली हाइटलाइट्स आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रातः 10 बजे जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की।

एक नजर कल की प्रातकालीन सभा की तरफ। प्रातकालीन सभा में रामचरित मानस गान का समय रहेगा 6:30 पर, खेती निवाद 6:45 पर, लोक भजन 6:50 पर।

कार्यक्रम कुछ देर से आप सुन पाएंगे 8:15 पर राजस्थानी लोकगीत 8:45 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 9:30 पर।

सुगम संगीत 9:10 पर साथ में ठीक 11 बजे भी आप सुन पाएंगे। फिल्म संगीत 11:30 पर विविध भारती मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर। 10 बजे दिन के 12 बजे के बाद भी आप विविध भारती सुन सकते हैं।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रातः 9 बजे, समाचार प्रभाग दिल्ली केंद्र से प्रातः 8 बजे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न किया।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। हमारे नन्हे श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

0: ज्ञान की ज्योति जलाएं हम, अज्ञान को दूर भगाएं, सच्चाई की राह पर चलकर जीवन सफल बनाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के कार्यक्रम का। तो सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बच्चों के मुख से में, जिसे लेकर हाजिर है आपकी दीदी प्रीति यादव। जय हिंद बच्चों। बच्चों, हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बातचीत से, और आज की बातचीत का विषय है स्वच्छता का महत्व। और इस विषय पर बात की है सुश्री अवनी निनामा इमानुएल मिशन स्कूल बांसवाड़ा की छात्रा और सुश्री कृतिका निनामा आर्यन स्कूल बांसवाड़ा की छात्रा से। तो आइए सुनते हैं उनकी बातचीत।
1: हमारे बीच दो बालिकाएं आई हैं, अवनी निनामा और कृतिका निनामा। हेलो बच्चों।
2: हेलो मैम।
1: अवनी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो और आपके स्कूल का क्या नाम है?
3: मैं इमानुएल मिशन स्कूल में पढ़ती हूँ और सातवीं कक्षा की छात्रा हूँ।
1: और कृतिका?
4: मैं कक्षा आठवीं की छात्रा हूँ और मैं आर्यन एकेडमी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ।
1: तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य, हमारी खुशियों और हमारे आसपास के वातावरण से है, और वह है स्वच्छता। तो अवनी और कृतिका, क्या आपको स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण पसंद है?
3: हाँ, हमें स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण पसंद है।
1: अवनी, आप बता सकते हैं कि हमें रोज नहाना, हाथ मुंह धोना और साफ कपड़े पहनना क्यों जरूरी है?
3: हमें रोज नहाना चाहिए ताकि हमारे शरीर के कीटाणु को दूर रखें और बीमारी से बचाव हो।
1: बिल्कुल ठीक अवनी। कृतिका, अगर हम हाथ साफ किए बिना खाना खाएं तो क्या हो सकता है?
4: अगर हम हाथ साफ किए बिना खाना खाएं तो हाथ के जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में जा सकते हैं और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारी सेहत पर असर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अवनी, क्या हमें अपने घर को ही साफ रखना पर्याप्त होता है?
3: हमें घर के साथ साथ आसपास की जगहों को भी साफ रखना चाहिए। हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए या फिर कूड़े की गाड़ी में डालना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक। कृतिका, आपको पता है हमारे घर का कचरा कूड़ा हमें कहाँ फेंकना चाहिए?
4: हाँ, हमें अपने घर का कूड़ा और कचरा हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, और अगर कचरे वाली गाड़ी आती हो तो उसमें ही अपना कचरा डालना चाहिए, ना कि दूसरे आसपास जगहों पर फेंक देना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा। अवनी, जब हम बाहर खेल रहे हों या कहीं पिकनिक मनाने गए हों या स्कूल में हों, तब हमारी जिम्मेदारी क्या होती?
3: जब हम कभी बाहर जाते हैं या फिर पिकनिक पे जाते हैं तो हम जो हमारे साथ लिया हुआ सामान खाने पीने का होता है उसे वहीं नहीं फेंकना चाहिए, उसे हमारे साथ रख लेना चाहिए या फिर कूड़ेदान में डाल देना चाहिए।
1: तो अवनी और कृतिका, जब आपकी मम्मी घर में सफाई कर रही होती है तो आप भी सफाई में हाथ बटाते हो?
4: हाँ, जब हमारी मम्मी घर में सफाई करती है तो हम भी हाथ

0: बटाते हैं, जैसे उनके कामों में मदद करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और बर्तन साफ करना।
1: और रवनी, आप?
2: मैं भी झाड़ू लगाती हूँ या बर्तन धो देती हूँ, और कभी कभी मदद करने के लिए पोछा भी लगा देती हूँ।
1: बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मदद तो जरूर करना चाहिए। हम सफाई रखेंगे तभी हमारा घर भी साफ रहेगा। अब अवनी और कृतिका, आप दोनों को स्वच्छता से संबंधित कोई कविता या कहानी आती है?
0: हाँ, हमें एक कहानी और कविता आती है, हम उसे जरूर यहाँ पर सुनाना चाहेंगे।
1: तो अवनी, आप क्या सुनाएंगी?
2: मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। मेरी कहानी का नाम है स्वच्छता का जादू। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी एक आदत बिल्कुल अलग थी। सोनू को साफ सफाई बहुत पसंद थी। वह अपना कमरा साफ रखता, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालता और खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोता था। मोनू थोड़ा लापरवाह था, वह चॉकलेट का रैपर सड़क पर फेंक देता, खिलौने इधर उधर डाल देता और कभी कभी बिना हाथ धोए ही खाना खाने बैठ जाता। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने बच्चों से कहा, बच्चों कल हम स्वच्छता दिवस मनाएंगे, सभी बच्चे अपने आसपास की सफाई करेंगे। अगले दिन सोनू झाड़ू, कूड़ेदान और दस्ताने लेकर तैयार था। मोनू ने कहा, इतनी सफाई करने की क्या जरूरत है, एक रेपर से क्या फर्क पड़ेगा। सोनू मुस्कुराकर बोला, एक रेपर से शायद ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर हर बच्चा एक एक रेपर सड़क पर फेंकेगा तो सोचो कितनी गंदगी हो जाएगी। मोनू ने कुछ नहीं कहा। दोनों स्कूल के पीछे वाले मैदान में पहुंचे, वहां बहुत सारा कूड़ा पड़ा था। कुछ बच्चे उसे उठाकर कूड़ेदान में डालने लगे, सोनू भी सफाई करने लगा। अचानक मोनू को जमीन पर एक सुंदर सा कागज दिखाई दिया, उस पर लिखा था, जिस जगह को तुम अपना समझते हो उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी अपनी समझो। मोनू ने कागज पढ़ा और सोचने लगा। उसने चारों तरफ देखा, मैदान गंदा था, नाली में कचरा भरा था और कुछ पौधों के पास प्लास्टिक की थैलियां पड़ी थी। मोनू बोला, सोनू आज मुझे समझ आ गया कि सफाई सिर्फ घर की नहीं पूरे आसपास की जिम्मेदारी है। दोनों ने मिलकर सफाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में दूसरे बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए। शाम तक मैदान साफ और सुंदर हो गया। प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों की प्रशंसा की। मोनू ने कहा, आज से मैं कूड़ा कभी सड़क पर नहीं फेंकूंगा और दूसरों को भी समझाऊंगा। सोनू ने मुस्कुराकर कहा, देखा मोनू, स्वच्छता का जादू। मोनू हंसते हुए बोला, हाँ, और इसका जादू करने के लिए किसी छड़ी की नहीं, बस अच्छी आदतों और थोड़ी सी जिम्मेदारी की जरूरत। उस दिन से मोनू ने अपनी आदतें बदल ली। अब वह घर, स्कूल और आसपास की जगह को साफ रखने में सबसे आगे रहता था। कहानी की सीख, स्वच्छता केवल सफाई करने का काम नहीं, बल्कि हमारी रोज की अच्छी आदत और जिम्मेदारी है। छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई आपने कि छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदला ला सकती है। अब कृतिका, आप कौन सी कविता सुनाने वाली है?
0: मैं स्वच्छता पर एक कविता सुनाना चाहूंगी। स्वच्छता का रखेंगे ध्यान, साफ सफाई का रखेंगे ध्यान, स्वच्छ बनेगा अपना जान। कूड़ा हम ना इधर उधर डालें, कूड़ेदान में उसको डालें, हाथ धोएंगे साबुन से, बीमारी भागेगी हमसे। घर और स्कूल हो या मैदान, स्वच्छ रहेंगे हर स्थान। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें, मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। छोटी सी आदत बड़ा कमाल, स्वच्छ भारत बने खुशहाल।
1: बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने कि छोटी सी आदत से बड़ा कमाल हो सकता है और हमारा भारत स्वच्छ और खुशहाल बन सकता है। तो अवनी और कृतिका, अपनी कहानी और कविता के बाद अब आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे, अपने घर और स्कूल को भी स्वच्छ रखेंगे
0: और कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि स्वच्छता रखना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सभी बच्चे इस संदेश को अपनाएं और इसका पालन करें।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी और संदेश दिया आपने। तो बच्चों, याद रखिए, स्वच्छता केवल सफाई करने का काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार आदत और हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। तो अवनी और कृतिका, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया और अच्छी सी कहानी कविता सुनाई, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
4: एक चाबी है CKYC आईडी।
3: CKYC मतलब?
4: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।

0: वाह।
1: RBI कहता है
2: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: तो बच्चों अभी आपने सुश्री अवनी निनामा और कृतिका निनामा से स्वच्छता के महत्व के बारे में बातचीत सुनी। अब चलते हैं अगले विषय की ओर, विश्व पशु कल्याण दिवस। बच्चों क्या आपने सोचा है कि हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी भी हमारी तरह भूख प्यास दर्द और खुशी महसूस करते हैं। इन्हीं बेजुबान जीवों के प्रति प्रेम दया और जिम्मेदारी का संदेश देने के लिए हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पशुओं को परेशान नहीं करेंगे, उन्हें पत्थर नहीं मारेंगे और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से डराएंगे। गर्मी में उनके लिए पानी रखना, भूखे पशु को भोजन देना और घायल जानवर को देखकर किसी पशु चिकित्सक या संबंधित संस्था की मदद लेना हमारी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। बच्चों याद रखिए जानवर बोल नहीं सकते लेकिन उन्हें भी प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है। तो बच्चों जीवों पर दया यही सच्ची मानवता है। तो बच्चों ये तो थी चर्चा, अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुन लेते हैं प्यारा सा गीत।

0: फिर से स्वागत है बच्चों आपका कार्यक्रम में। बच्चों हमारा अगला विषय है वन्य जीव सप्ताह। बच्चों हमारे जंगलों में बाघ, हाथी, हिरण, भालू, मोर और कई तरह के पक्षी व जीव जंतु रहते हैं। ये सभी प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग है। वन्य जीव सप्ताह हर वर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। वन्य जीवों के लिए जंगल ही उनका घर है। पेड़ों की कटाई, जंगलों का नष्ट होना और अवैध शिकार उनके जीवन के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हमें जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं संदेश।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
6: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
5: अरे वही अपना 60 रुपया।
6: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
5: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
6: और दूसरा?
5: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
6: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
5: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
0: फिर से स्वागत है बच्चों आपका कार्यक्रम में। बच्चों हमारा अगला विषय है अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह। बच्चों क्या आप जानते हैं कि हर इंसान बराबर होता है? किसी व्यक्ति को उसकी जाति, जन्म या सामाजिक पहचान के आधार पर अपने से छोटा समझना या उससे भेदभाव करना गलत है। इसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को समाज के लिए बड़ी बुराई माना और इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई। हमारा संविधान भी अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे किसी भी रूप में अपनाना अपराध मानता है। बच्चों हमें अपने स्कूल, घर और समाज में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किसी को साथ खेलने, बैठने या दोस्ती करने से केवल उसकी जाति या पहचान के कारण रोकना नहीं चाहिए। तो बच्चों हम सभी ये संकल्प ले कि न भेदभाव करेंगे और न ही सहेंगे, सबको सम्मान देंगे और मिलजुल कर रहेंगे। समानता और सम्मान से ही एक सुंदर समाज बनता है। ये तो थी चर्चा, अब फिर से चलते हैं गीत संगीत की ओर। सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो बच्चों, यदि हमें बीमारियों से बचना है, स्वस्थ विकास करना है और आपने श्वास और ताजगी से भरे रहना है, तो हमें नियमित रूप से अपने साबुन से हाथ धोने, नहाने और हानिकारक कीटाणुओं और बैक्टीरिया को हमसे अपने आप से दूर रखना है। और बचपन से ही सबको साफ सफाई की आदतें अपनानी चाहिए, जिससे कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रह सके। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने और हमेशा तरोताजा और आत्मविश्वास को महसूस करें। बेहतर सफाई और बेहतर मस्तिष्क से ही आप साफ सुथरे स्कूल, कक्षा सब में आपका मन अच्छे से लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो बच्चों, ये सारे नियमों का आप ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो इसी के साथ समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो दीजिए अनुमति आपकी दीदी प्रीति यादव को फिर मिलने के वादे के साथ। जय हिंद बच्चों।

अभी हमारे निर्णय श्रोताओं ने उनकी दीदी प्रीति यादव से बच्चों के मुख से कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम में 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है सूर्यवंशम।

लीजिए सुनिए अगला गीत हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत संगीत है रविंद्र जैन का और फिल्म का नाम है अखियों के झरोकों से।

0: ये है विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया बेरंग पिया है वहाँ से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: समीर का लिखा गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का। फिल्म का नाम है जमाना दीवाना।

0: अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में। नख्मा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है मंजिल मंजिल।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार है विट्ठल भाई पटेल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है बॉबी।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

0: आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। समीर का लिखा गीत सुनिए, उदित नारायण, अलका याग्निक, विनोद राठौड़, मिताली चौधरी की

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।

0: रस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों कार्यक्रम की अगली पेशकश है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है विवाह।

0: में मैं
1: सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल
2: जाने
1: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार नगमे।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। नगमा निगार है जावेद अख्तर, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:30 होने को ही लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार साथ में जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपये कैश है।
3: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
4: और दूसरा
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
4: ये लो यार यूपीआई ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
8: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा, देश के संस्थानों, एमएसएमई तथा स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के समक्षेत्र में दो नर गोडावण को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। देश में अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। और एशियाई खेल 2026 का आज जापान के नागोया में आधिकारिक समापन, पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पाली में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित उद्यमी सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने छोटे उद्यमियों, कारीगरों और व्यापारियों को नई ऊर्जा दी है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारे स्थानीय उत्पाद अब वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लघु उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों और कृषि उत्पादों पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, निर्यात बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्यम को विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने छोटे उद्योगों के लिए कई नवाचार किए हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सुगम रास्ता मिल सके। हमने पंच गौरव के माध्यम से हर जिले के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और इस पर हम प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम में सांसद मदन राठौड़ और पीपी चौधरी सहित बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क के सम क्षेत्र में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण पक्षियों को छोड़ा। इस अवसर पर वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। श्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में मदद मिलेगी। श्री यादव ने कहा कि लुप्त प्राय पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है।
2: ये आज दो गोडावण मेल छोड़े गए हैं, पर ये अभी शुरुआत हुई। अभी पहले उनके पूरे बिहेवियर को, क्योंकि तो पहली बार वाइल्ड में गए हैं, बिहेवियर को, पैटर्न को, फूड हैबिट को, हैबिटेट में एडजस्टमेंट को, इसको पूरा ऑब्जर्व किया जाए। उसके बाद हमारे जो और बर्ड्स हैं उनको समय समय पर छोड़ा जाएगा। 2022 से 2026 के बीच में राजस्थान में हमने जंप स्टार्ट के काफी प्रयोग सफल करे। जंप स्टार्ट का ये जो एक प्रयोग है हमारा गुजरात में भी सक्सेसफुल हुआ है। जैसे हमने दो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सम में, रामदेवरा में बनाए हैं, ऐसे ही पिछले सितंबर में मैं कच्छ के पास नलिया में कंजर्वेशन सेंटर का मैं उद्घाटन करके आया था। गोडावण इस जगह की शान है,

0: आज विश्व पशु दिवस है। ये दिवस पशु संरक्षण से प्रकृति के संतुलन तक सह अस्तित्व का संदेश देता है। इस दिन का उद्देश्य पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार को कम करना है। इस वर्ष की थीम उनकी नजरों से दुनिया देखे रखी गई है। पशु दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से पशुओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्रति करुणा भाव बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। पशु दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उधर वन्य जीव सप्ताह के तहत सवाईमाधोपुर में रणथंभौर बाघ परियोजना की ओर से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और विद्यार्थियों को निःशुल्क वन भ्रमण करवाया जा रहा है। वहीं पाली में मनरेगा के तहत काम कर रही महिला श्रमिकों के लिए विशेष जागरूकता सत्र रखा गया। इस दौरान उन्हें कार्यस्थल या जंगलों के पास काम करते समय जरूरी सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। पीएम सेतु योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ये योजना पिछले साल आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से शहरी नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान 2026 आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक प्राधिकरण परिसर में नागरिक सेवा केंद्र में जोनवार सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य शहरी नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उनसे संबंधित प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 साल से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉ सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि 2017 में शुरू होने के बाद से अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। इसीलिए ऐसे मामलों के समाधान की सफलता दर 71.79% रही है। एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कर नीति और सुधार है। इसे मुख्य रूप से माल और सेवा कर जीएसटी के रूप में लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किए गए इस टैक्स का मुख्य उद्देश्य देश भर में फैले कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक समान और एकीकृत कर प्रणाली बनाना था। एक रिपोर्ट।
1: जीएसटी से पहले केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर थे। इसके कारण राज्यों के बीच व्यापार करना जटिल था। जीएसटी के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब पूरे देश में एक ही सामान या सेवा पर समान दर लागू होती है। जीएसटी प्रणाली को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय बिक्री पर वसूला जाने वाला कर है। एसजीएसटी जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर वसूला जाता है। वहीं आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। जीएसटी लागू होने से कर ढांचे के आसान होने के साथ साथ सारा काम ऑनलाइन होने से कर चोरी में काफी कमी आई।

है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के कारण चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में सकल जीएसटी संग्रह 12,46,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.6% ज्यादा है। जीएसटी के कारण जहां कई वस्तुओं की लागत घटी है, वहीं पूरा भारत अब एकीकृत बाजार बन गया है। समाचार कक्ष से

0: की चुनौतियों और उनके समाधान पर मंथन किया जाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने इन खेलों में इस बार 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, देश के संस्थानों, एमएसएमई और स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के समक्षेत्र में 2 नर गोडावण को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। देश में अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। और एशियाई खेल 2026 का आज जापान के नागोया में आधिकारिक समापन, पदक तालिका में भारत 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूर्णिया से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। नगर निकाय चुनाव 2026 में सीकर नगर परिषद की नव निर्वाचित सभापति खतीजा बानू ने पिछले दिनों सभापति पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परिषद में नई जनप्रतिनिधि व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर सभापति ने कहा कि शहर का समग्र और संतुलित विकास, बेहतर सफाई व्यवस्था, सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था उनकी प्राथमिकता रहेगी। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय में पंचायत समितिवार मतगणना कक्ष निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों सीकर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया तथा जनसभा को संबोधित किया। अपने प्रवास में श्री शर्मा ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में आंगन मिलन सेवा का आयोजन रखा गया। अजीतगढ़ और दिवराला सेक्टर के हर आंगनबाड़ी केंद्र पर ये कार्यक्रम हुए। इसमें महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य तथा पोषण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान 11 गर्भवती महिलाओं को पारंपरिक रूप से गोद भराई की रस्म पूरी कर उन्हें पोषण किट वितरित किए गए। साथ ही आंगनबाड़ी से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली 16 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। अभियान के तहत महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शिरकत की। कार्यक्रम में श्री खर्रा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की देखरेख करने के साथ साथ समाज की खुशहाली, पोषण और संस्कार निर्माण की सबसे मजबूत बुनियाद हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत बीते दिनों सफाई मित्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नगर परिषद सभागार में हुए इस समारोह में सफाई मित्रों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने सफाई मित्रों से संवाद कर उनके कार्यस्थल से संबंधित समस्याओं तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा की। आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने में सफाई मित्रों का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसे में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना नगर परिषद की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र और आरआर सेंटर में कार्यरत महिलाओं से भी संवाद किया गया। जिले में मानसिक स्वास्थ्य

0: माह के तहत जिला कारागृह में कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, तनाव प्रबंधन के उपाय बताना तथा सकारात्मक सोच और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान मन दर्पण 2 के तहत विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन लोक संस्कृति, कला और विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम रखे गए। रामगढ़ फतेहपुर स्थित जगदीश मंदिर में मांगणियार, कालबेलिया और रूबिला सहित विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। जिला संग्रहालय में कच्ची घोड़ी, कठपुतली शो तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए श्री कल्याण स्कूल के 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पहली आज री खास खास खबर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कया देश रा संस्थाना एमएसएमई और स्टार्टअप री मजबूती सु ही विकसित भारत रो निर्माण वेला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेरा डेजर्ट नेशनल पार्क रा संखेतर माए दो नर गोडावन ने प्राकृतिक आवास माए छोड़िया। देश माए हाल ताई आयोजित 16 पेंशन अदालता माए 20,676 शिकायतारो मौका माथे ही हल काढ़ियो गयो। और एशियाई खेल 2026 रो आज जापान रा नागोया माए आधिकारिक समापन। पदक तालिका माए भारत चौथी ठोर माथे रियो। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अबे समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कया के देश रा संस्थाना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप री मजबूती सु ही विकसित भारत बनेला। नई दिल्ली माए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया रा 58वां स्थापना दिवस जलसा माए दे कया के निवेशक रो विश्वास हासिल कर ही देश तरक्की कर सके है। उपराष्ट्रपति कया के भारत दुनिया री सबू तेजी सु बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वा माए भेलो है और तेजी सु वैरिया तकनीकी बदलावारा दौर माए दाखिल वैरियो है। श्री राधाकृष्णन कया के देश माए बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस ने बढ़ावो दिवा माए संस्थान रो योगदान सराहनीय रियो है। इन वास्ते ओ टिकाऊ विकास रा हल्का माए वैश्विक मानक स्थापित करियो है। वणा विश्वास जतायो के आत्मनिर्भर भारत बनावा माए संस्थानारी कोशिशा सु भारत दुनियारी सबू बड़ी माली व्यवस्था बन सके है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पाली माए लघु उद्योग भारती री कानी उराख्या उद्यमी सम्मेलन माए भाग लेना। इन मौके वे कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री दूरदर्शी अगुवाई माए मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जेड़ा अभियान छोटा उद्यमिया कारीगरा और व्यापारिया ने नई ऊर्जा दी है। वे कया के महा का स्थानीय उत्पाद अब वैश्विक बाजार ताई पुगरिया है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमियासु कया के वे राजस्थान माए मुहैया स्थानीय संसाधना और कृषि उत्पाद माथे आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर बाखातर आगे आवे। वे कया के देशी अर्थव्यवस्था ने बढ़ावो देबा माए एमएसएमई री महताऊ योगदान है।
1: देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने निर्यात बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लघु मध्यम सूक्ष्म उद्यम को विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने

0: छोटे उद्योगों के लिए कई नवाचार किए हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सुगम रास्ता मिल सके। हमने पंच गौरव के माध्यम से हर जिले के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और इस पर हम प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं।
1: कार्यक्रम में सांसद मदन राठौर, पीपी चौधरी समेत बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रिया। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क रास सम हल्का में दो नर गोडावन पक्षी छोड़िया। इन मौके वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रिया। श्री यादव खबर नवेशासु बातचीत में कया कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और कर्मचारियों ने एक दशक री मेहनत रो नतीजो है। वे कया कि पक्षियों ने जंगल में छोड़ बाजू वारा संरक्षण में लाभ मिलेला। श्री यादव कया कि खत्म होता पक्षियों ने बचावा खातर सरकार खास कोशिश कर रही है।
2: ये आज दो गोडावन मेल छोड़े गए हैं पर ये अभी शुरुआत हुई। अभी पहले उनके पूरे बिहेवियर को, क्योंकि तो पहली बार वाइल्ड में गए हैं, बिहेवियर को, पैटर्न को, फूड हैबिट को, हैबिटेट में एडजस्टमेंट को, इसको पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद हमारे जो और बर्ड्स हैं उनको समय समय पर छोड़ा जाएगा। 2022 से 2026 के बीच में राजस्थान में हमने जंप स्टार्ट के काफी प्रयोग सफल करे। जंप स्टार्ट का ये जो एक प्रयोग है हमारा गुजरात में भी सक्सेसफुल हुआ है। जैसे हमने दो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सम्य और रामदेवरा में बनाए हैं, ऐसे ही पिछले सितंबर में मैं कच्छ के पास नलिया में कंजर्वेशन सेंटर का मैं उद्घाटन करके आया था। गोडावन इस जगह की शान है।
1: आज विश्व पशु दिवस है। वो दिवस पशुओं ने बचावा सु प्रकृति रो संतुलन बनियो रहे है वो संदेश देवे है। इन दिन रो लगस पशु कल्याण रेकानी जाग जगाबा और वायरस आगे वैरी जोर जबरदस्ती और बुरा व्यवहार रेकानी सामाजिक चेतना बनानो है। इन वर्ष री थीम उनकी नजरों से दुनिया देखे रखी गई है। इन मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया संदेश माए लोगा सु जिनावरा ने बचावा बढ़ावा और हमारी कहानी दया और प्रेम रूभाव राखबा ने कया। पशु दिवस में से प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। वठी ने वन्य जीव सप्ताह रे तहत सवाई माधोपुर में रणथंबोर बाघ परियोजना रिकानी जागरूकता गतिविधियां रखी गई और विद्यार्थियों ने निशुल्क वन भ्रमण करवायो जा रो है। पाली माए मनरेगा रे तहत काम करी महिला मजूर खातर जागरूकता सत्र रखो गयो। इन दौरान वाने काम री ठोड़ और जंगला रे कने काम करती टेम जरूरी सुरक्षा उपायों री जानकारी दी गई। पीएम सेतु योजना ने आज एक बरस पूरो वेग्यो है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय री आ योजना लारला बरस आज ही रे दिन शुरू हुई है। इंडो लगस आईटीआई ने आधुनिक और उद्योगारी जरूरतारे मुजब तैयार करनो है। योजना रे तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधावा ने बेहतर बनायो जा रियो है। सागे ही मोटियारा ने रोजगार खातर जरूरी व्यवहारिक कौशल देबा माथे जोर दियो जा रियो है। पीएम सेतु योजना खातर कुल 60,000 करोड़ रूपया सु बत्ता प्रावधान करियो गयो है। राज्य सरकारी कानी हु शहरी नागरिका ने न्यारी न्यारी सेवा मारो तुरंत लाभ मुहैया कराबारा लगस सु सेवा सेतु अभियान 2026 राख्यो जारियो है। अभियान रे तहत जयपुर विकास प्राधिकरण रिकानी सु 7 से 16 अक्टूबर ताई प्राधिकरण परिसर माए नागरिक सेवा केंद्र माए जोनवार सेवा शिविर राख्या जावेला। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन बताया कि इन अभियान रो उद्देश्य शहरी नागरिका ने न्यारी न्यारी सेवा वा मुहैया कराबार सागे उनसे जुड़िया मुद्दा रा मौका माथे निस्तारण पक्को करनो है। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत री अगुवाई करेला। इन दौरान 80 बरस सु 32 उम्र रा सुपर सीनियर पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगिया री 849 लंबा टेम री शिकायत रो हल काढ़ियो जावेला। डॉक्टर सिंह इन बरस 13 महीने राखी 16वीं पेंशन अदालत री सफलतारी गाथावा ने उजागर करबा वाला छोटा पोस्टर जारी करेला। इन मौके पारिवारिक पेंशन भोगिया सु जुड़िया मुद्दा माथे अक्सर पूछा जाबा वाला सवाल और उत्तर वाली किताब रो विमोचन भी करियो जावेला। मंत्रालय बतायो कि 2017 में शुरू होबारे पाछे

0: में आयोजित 16 पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों रो मौका माथे ही हल काढ़ियो गयो है। इन खातर इन भात्रा मामला रा समाधान री सफलता री दर 71.79% रही। एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स केंद्र सरकारी महत्वाकांक्षी कर नीति और सुधार है। इनमें खास रूप माल और सेवा कर जीएसटी रा रूप में लागू करियो गयो है। 1 जुलाई 2017 ने पूरा देश में लागू करिया गया इन टैक्स रो खास लगस देश भर में फैलिया कई अप्रत्यक्ष करा ने खत्म कर एक समान और एकीकृत कर प्रणाली बनानो है। एक रिपोर्ट।
1: जीएसटी से पहले केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर थे, इसके कारण राज्यों के बीच व्यापार करना जटिल था। जीएसटी के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब पूरे देश में एक ही सामान या सेवा पर समान दर लागू होती है। जीएसटी प्रणाली को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय बिक्री पर वसूला जाने वाला कर है। एसजीएसटी जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर वसूला जाता है। वहीं आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। जीएसटी लागू होने से कर ढांचे के आसान होने के साथ साथ सारा काम ऑनलाइन होने से कर चोरी में काफी कमी आई है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के कारण चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में सकल जीएसटी संग्रह 12,46,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.6% ज्यादा है। जीएसटी के कारण जहां कई वस्तुओं की लागत घटी है, वहीं पूरा भारत अब एकीकृत बाजार बन गया है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: एशियाई खेल 2026 रो जापान रा नागोया में आधिकारिक समापन रह गयो। इन दौरान खिलाड़ी मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेला रा मेजबान कतर ने सौंपिया गया। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत पावाली नीरू ढांडा ध्वजवाहक रा रूप में भारतीय दल की अगुवाई करी। भारत खेला में 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य पदक समेत 85 पदक सागे अंक तालिका में चौथी ठोड़ माथे रियो। और अब आखिर में खास खबरां एक और फेरू। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कया देश रा संस्थान एमएसएमई और स्टार्टअप री मजबूती तो ही विकसित भारत रो निर्माण वेला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेरा डेजर्ट पार्क रा सम क्षेत्र में 2 नर गोडावर ने प्राकृतिक आवास में छोड़िया। देश में हाल तय आयोजित 16 पेंशन अदालतों में 20,676 शिकायतों रो मौका माथे हल काढ़ियो गयो। और एशियाई खेल 2026 रो आज जापान रा नागोया में आधिकारिक समापन। पदक तालिका में भारत चौथी ठोड़ माथे रियो। इंद्रेस आ गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 8 पूरो भी हो वहां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजने को है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चौपाल।

स्वास्थ्य है, मिट्टी में जो सेहत है, इन्हें बनाए रखना खूब जरूरी है। जैविक खेती जो है ये आने दिशा में एक महत्वपूर्ण खेती की पद्धति है, जिनमें अपने गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, फसल ना अवशेष ने अन्य जैविक जो संसाधन है इनका उपयोग अपने में करो। सबसे मोटो फायदो अपनी मिट्टी की उर्वरकता जो है ये अच्छी थी जाए। जैविक खाद ने कंपोस्ट ना उपयोग थकी मिट्टी ने में जैविक पदार्थ बढ़ावाने में मदद मिले। मिट्टी की जो संरचना है इनमें मौजूद जो लाभकारी सूक्ष्म जीव है इनके वास्ते एक अच्छो वातावरण बनी सके। मिट्टी में जो पानी में रोकवाने की क्षमता है इनमें भी सुधार था। जेवरा मिट्टी में पर्याप्त जैविक पदार्थ होगा ते ई पानी ने अच्छा तरीका तक धारण कर सकेगा। इटले पानी जो उपयोग है ई वधारे प्रभावी ढंग थकी करवाने में मदद मिलेगा। किसान भाई घर ने खेतर ने में जे उपलब्ध गोबर है, फसल ना अवशेष है, जैविक सामग्री है, इनो उपयोग करीने अपने जैविक खाद बनावी सको। खेतर ने में पोषक तत्व जो है इनने वापस लाबाने में मदद मिले। कृषि ना जो अवशेष है इनो भी उपयोग थी जाए। पर्यावरण में भी हाथे हाथे संरक्षण था। जैविक खेती ने में रासायनिक उर्वरक ने कीटनाशक ने निर्भरता जे कम करवानो जे आपणे प्रयास करो ने मिट्टी पानी ने खेतर ने आए पाए जे प्राकृतिक वातावरण है इन मते रासायनिक दबाव जे थईरो है इने भी कम करवा में मदद मिले। इने अलावा खेती जे है ये केवल अपने आज नी फसल ने वास्ते नहीं है। आपणे ये सोचवो कि हमारी जो मिट्टी जो है ये आबा वाला जो वर्ष है वर्षों तक ये उपजाऊ बनी रहे। इटले आपने जैविक खेती की तरफ जाव पड़ेगा, जैविक तरीका थकी खेती करनी पड़ेगा ने उचित प्रबंधन जो है ये आनी दिशा में अपने वास्ते घणो उपयोगी है। किसान भाइयों जैविक खेती किसान भाइयों ने वास्ते खूब फायदेमंद है। आण में खर्चो भी कम आवे ने लाभ वधारे मिले ने जैविक तरीका थकी उपजेली जो फसल है इननी बाजार में कीमत भी अच्छी मिले, जिन थकी आपणे किसान भाई ने आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ थाय। किसान भाइयों मारो मन थई रह्यो है कि आपणे एक बढ़िया सो भजन हामरो ने पसे अगाड़ी एक पशुपालक भाई थकी वार्ता थई थी ई आपणे हामरंगा।

0: राम जी भाई, जय राम जी।
1: जय राम जी दादा, जय राम जी
0: भाई। हूँ नाम है तुम्हारो?
1: मारो नाम आशीष गणावा है।
0: आशीष भाई, तमे आईनास रेवा वारो?
1: हाउ मोटेस नो।
0: हूँ नाम है अपने आई गाम नो?
1: मारे पिंपोरा
0: वासवाड़ा।
1: हाउ
0: तुम्हारे खेती बाड़ी भी हो?
1: हाउ है खेती बाड़ी है।
0: आ घोर तुम्हारो से?
1: हाउ मारो स्केर।
0: कितनी खेती बाड़ी तुम्हारे?
1: अमारो अटे 8 बीघा है। पहले एती वदार पण एमा थोड़ी 30 रही है।
0: अच्छा अच्छा। आशीष भाई एक बात उतारो, तुम पशु भी रखो के हूँ?
1: ओ हाँ राकन साहब।
0: पशुओं में तुम्हें हो को पशु है तुम्हारे कने?
1: हमारे भैंस है, गाय है, बोकड़ा है, फिर कुकड़े भी हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ
0: तो आ सब पशु तुम्हें रखो तो तुम्हें तकलीफ तो आती होगा?
1: ओ दादा कहीं तकलीफ।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: 12 महीने करव पड़े।
0: हाँ,
1: जीव जंतु है, राखवा भी पड़े, केर

क्षमता है ये भी प्रभावित थाएगा। तो पशु जो है इनमें वास्ते अपने कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी रखनी पड़ेगा। कोई नमी नहीं हो, कीचड़ नहीं हो, गंदे पानी नहीं हो, सीलन नहीं हो, ये चीजों अपने ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मौसम जो है इनमें पशुओं में कई तरह ना पास संक्रमण ने बीमारियों का खतरो जो है ये बढ़ी जाए। आड़ में पसे एक समस्या ये भी है कि एक रोग आवे खुर पका न मुंह पका रोग, आज रोग है ये पशुओं में तेजी से फैलवा वाला पास संक्रामक रोग है। आड़ में पास पशु ना मुंह ने में छाला थी जी ने हाथे हाथे लार भी खूब आवा लगे, पेड़ ना जो खुर है इन्हें आय पाए पास घाव बन जाए, एवं लक्षण अपने देखें। पशु जो है ये सालवा में भी इन्हें घनी परेशानी आवे। तो अपने पशुओं ने ध्यान रखो वास्ते इनू समय में अपने टीकाकरण करव भी घणु जरूरी है। साफ सफाई नु भी ध्यान रखव है, ने कोई बीमार पशु है तो इन्हें स्वस्थ पशु थकी अपने अलग रखव ये भी घणु महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक पशु बीमार है तो इन्हें थकी संक्रमण बीजा पशु ने थी जाए। तो एटले आज सीजे है इनू अपने ध्यान रखव घणु जरूरी है ताकि अपने पशु ने जो है ये संक्रमण थकी बचाई शका। साफ सफाई स्वच्छता नु भी ध्यान रखव है क्योंकि मक्खी जो है मच्छर जो है कीड़ा जो है इनकी भी संख्या खूब बढ़े आना मौसम में ने एना गंदा वातावरण में पसे पशु ने नुकसान पसावी सके। तो पशुओं ने साफ ने सुरक्षित पानी पीवाड़ू है अपने ताकि इन्हें कोई बीमारी नहीं थे। क्योंकि अधिकतर जो जीवाणु है ये खावा पीवाना माध्यम थकी शरीर ने में पोसे जिन थकी पशु संक्रमित थी सके। तो किसान भाइयों आवी रीते अपने पशुओं भी ध्यान रखव है, अपने खुद नु तो ध्यान रखव है। ने अभी जाते जाते एक बढ़िया सो भजन हमरा ने पसे विदा लंगा।

अभी आपने शंकर भाई से कार्यक्रम चौपाल सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज, कुष्ठ रोग और विकलांग।

0: चिंता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
4: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
3: वो कैसे?
4: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना? कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
3: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
5: खेती बाड़ी सुन बड़ा सगड़ा कर सा भाई ना अश्विनी कुमार सेन को घणो घणो राम राम। रेणु जी थाना भी घणो घणो राम राम।
6: राम राम सा।
5: देखो रेणु जी, अक्टूबर माह शुरू होगो
6: जी जी,
5: और झटे आपा अपने किसान भाई की बात कर रहा, तो किसान भाई को जैसे महीनो कोई सो भी हो, एक फसल आवाज है और दूसरी की तैयारी में लाग जाए
6: जी जी।
5: अभी बात कर रहे आप, आ जाओ खरीफ की फसल की तैयारी में लागे डा और झटे तक हो सके लगभग लगभग आपने जो खरीफ की फसल अच्छी कटाई होगी भी की
6: जी, जी जी।
5: और अब बात कर रहा आप फसल के भंडारण की, तो आपने भंडारण में भी कई प्रकार की बातों को ध्यान रखना चाहिए
6: जी।
5: विद्यमान यू ध्यान रखना चाहिए कि आप भंडारण आप सही जगह पर करा और सागे सागे जो भी फसल को आप भंडारण करा वह अच्छी तरीके से सुकड़ी होनी चाहिए जी
6: जी, यानी
5: नमी नहीं रहनी चाहिए जी। और आप देखो शुरुआत में बात करें अक्टूबर माह की
6: जी जी,
5: और अक्टूबर माह में यानी नई फसल की भी आगाज हो जाए
6: जी जी।
5: जी आप बात करा रवि फसल की, सरसों गेहूं की, तो अभी सरसों की बात कर रहा, तो देखो सरसों के मान है और आपने किसान भाई तीन प्रकार से खर्चा ले
6: जी जी,
5: कई भाई अगेती भी ले लेजे और कई पछेती भी ले लेजे और कई जने जो मध्यम में चाले जे। लेकिन आप जस्सी भी फसल लिया आपने हिसाब के हिसाब से, तो आपने जो मौसम बचे तापमान बचे बी के आधार पर लेनी चाहिए, प्रमाणिक बिल प्रमाण जो अपना बीज है लेना चाहिए, अच्छी तरीके से अपने पूछे और अपने कौन सी फसल लेनी चाहिए, अपने मौसम के हिसाब से बातों को भी ध्यान रखना चाहिए
6: जी सर। सही बात बताई थे किया कि सरसों को अपने बुआई ई टाइम अपने चालू होगी अक्टूबर माह में, तो जी हाँ अश्विनी भाई बताया कि अक्टूबर को पहलो और जो दूसरो पखवाड़ो है इनमें सरसों की बुआई हो है और इनमें नमी बनाए राखबा तानी पाटो चलाए जावे है। इके अलावा जठे शुष्क क्षेत्र जाए और जठे कम पानी आवे है बी जगह चना और तारामीरा की बुआई भी इमें नमी की जावे है। इके अलावा आप थे अभी जानो कि अक्टूबर को महीनो तो चाल ही रियो छे, साध चाल रहा है, जिया जिया अक्टूबर को महीनो खत्म हो लो बिया बिया आप गेहूं और जौ की खेती की तैयारी भी कर लिया ना।
5: बिल्कुल।
6: इके अलावा बीजा को उपचार भी की हो जावे है। इके अलावा भाई ये भी आपने ध्यान रखनो चाहिए कि पशुपालन और चारा को प्रबंधन किया करा, क्योंकि थाने सब पतो जे सर्दी आबाड़ी छे और फसला की कटाई भी लगभग हो चुकी है, तो बी के अलावा आपने पशुआ की देखभाल किया करा, किया आपा चारा को प्रबंधन करा, क्योंकि थाने पतो है कि अब सर्दियां आबाड़ी छे तो बाजरा और जवार की जो कड़ब छे बी के लिए जो टोडा और गवरिया है बाने जमाए जावे हैं ताकि बारिश में नमी सुबी को बचाव कर सका। इके अलावा मूंग और मूट को जो भूसो है दुधारू पशुआ के लिए बहुत ही पौष्टिक हो गए है, तो आपने इन्हें सूखे स्थान पर स्टोर कर लेनो चाहिए। इके अलावा मौसम में ठंडक आना सु पशुआ ने हरे चारो खड़ बाटो दियो जानो चाहिए और रात के समय ठंडी हवा सु बचावा तानी जो छप्पर होला बाकी की मरम्मत अभ्यारी आपने कर लेनी चाहिए।
5: बिल्कुल, यानी आप जो नई फसल ले रहे जा
6: जी जी,
5: बीमा आपने कई प्रकार की सावधानी भी रखनी चाहिए
6: जी।
5: जैसे आप खरीफ फसल की कटाई से पहले आप कीट और रोगा की स्थिति को निरीक्षण कर रहा था
6: जी।
5: रवि फसल में खरपतवार और शुरुआती कीटा मण भी आपने निगरानी रखनी चाहिए। साथ साथ कीटनाशक को प्रयोग केवल अनुशंसित मात्रा एवं सुरक्षित तरीका से आपने करना चाहिए। आप बात करा मृदा स्वास्थ्य की, तो देखो खेत में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट
6: डाल दे अभी नहीं।
5: बिल्कुल, और मिट्टी की जांच के आधार मारा ये अपन उर्वरकों का प्रयोग भी करना चाहिए।
6: किसान भाई बहना ने इसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए।
5: बिल्कुल, फसल अवशेष ने जड़ाबा के बजाय बने उचित तरीके से मिट्टी में मिलावे या कंपोस्ट बनावे। अब ये ऐसी बात बताया, लेकिन आके अलावा भी अपन कुछ बातों और ध्यान रखना चाहिए। बुआई से पहले मौसम को पूर्व अनुमान अवश्य अपने देख लेना चाहिए, तापमान में कौन सो बीज अब कब भी काम ले सका जा। इसके अलावा फसल चक्र अपने हरदम अपनाना चाहिए। अब हर बार क्या होगा अपनी जो मृदा से भी कमाने आप फसल चक्र अपना वाला तो अच्छी पैदावार भी आप ले सका जा, साथ ही में प्रमाणित बीजा को उपयोग अपने करना चाहिए जी। और एक अलावा जी आप अभी बात करें कृषि यंत्र की, तो बाकी भी देखो साफ सफाई और रख रखाव करना चाहिए जी। आप कई चीजा जो अभी खरीफ की फसल में आप जो कृषि यंत्र काम में लिया।

0: माने अपन बिल्कुल माने रखनो चाहे जी और नई जो अभी जो रवि की फसल आ रही है बम काम ले तो बाकी भी अपन साफ सफाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए
1: जी,
0: और सबसे बड़ी बात है अभी पशुओं के बारे में बताया तो पशुओं के लिए तो चारों सुरक्षित अपन रखनो चाहे जी सागे सागे पशुओं ने संतुलित आहार भी देते रहनो चाहे जी।
1: सही किया अश्विनी भाई। इक अलावा थे जानू ही अक्टूबर को महीनों चाल रो नवरात्रा आबाड़ा जे दशहरों आबाड़ो जे दिवाली आबाड़ी जे तो किसान भाई बहना ने खेती की कटाई के बाद में जो जुताई करनी चाहिए बीको तो ध्यान रखना ही चाहे। इक अलावा बने घर की लिपाई पुताई भी करनी चाहिए
0: बिल्कुल
1: मिट्टी और गोबर से कच्चा घरा आबाड़ा छत्ता की लिपाई करनी चाहे सफेदी करनी चाहे और इक अलावा अनाज का भंडार छप्पर और चूल्हा की मरम्मत भी करनी चाहे।
0: बहुत बढ़िया बात बताया। देखो अब आपने भी एक वो छे की अपना प्रोग्राम ने आगे बढ़ाता हुआ अपने किसान भाई इंतजार कर रहे वाला एक अच्छे सा लोकगीत को तो क्यों ने किसान भाई ने एक लोकगीत सुना दिया
1: जो जी सुनाओ अश्विनी भाई।

0: की विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप पधारी हैं और आपसे आज जानकारी लेवेगा जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो डॉक्टर सुनीता जी स्वागत है आपको, राम राम।
1: राम राम किसान भाइयों, राम राम।
0: सबों पहले तो जो को मौका किसान भाई बहनी आना यह बताओ कि जो जैव प्रौद्योगिकी ई विषय पर बात कर रहे हैं तो वो कहीं है सब।
1: किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी एक बेसिक या विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो जीवों और जो जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो छोटे छोटे कण होते हैं जैसे कि जीन होते हैं उनको साइंटिस्ट होते हैं उसको यूज कर करके किस तरह से उनसे विभिन्न उत्पाद तैयार कर लेते हैं और किस तरह से ये सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं या समाज कल्याण के लिए हितकारी होते हैं। तो ये जैव प्रौद्योगिकी की एक बेसिक साइंस की ब्रांच है जिसमें सभी शाखाओं जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग है, इनका सभी का सम्मिलन होता है।
0: जी साहब, ये तो वो परिचय। और आप खेती किसानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब यह बताओ कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इको कृषि में क्या इतिहास रही है?
1: जैव प्रौद्योगिकी की जो का इतिहास जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन समय में जो लोग थे इसका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे खमीर के रूप में, ब्रेड और शराब बनाने के रूप में करते थे। लेकिन जो इसकी विधिवत शुरुआत हुई है वो 20वीं सदी के अंत में हुई थी जब डीएनए की संरचना को हमने जान लिया था और जीन ट्रांसफर की जो तकनीक है उनको हमने विकसित कर लिया था। सबसे पहले 1983 में जो है ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनका परीक्षण किया गया और सन 2014 में पहला ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट आया था जिसके जो कि हम जानते हैं टमाटर का फ्लेवर सेवर टमाटर। और इसकी जो क्वालिटी क्या होती है कि ये एक जेनेटिकली या जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है और इसमें जो शेल्फ लाइफ है मतलब इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सबसे पहले अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी ने दिया था, उसके बाद भारत में 2002 में बीटी कपास आया था, तब से ही जो है प्रचलन चालू है जैव प्रौद्योगिकी का और अभी तक इसकी शुरुआत प्राचीन समय से चली आ रही है वो अभी तक कायम है।
0: डॉक्टर साहब, ये जो की जीएम फसल है या कहीं हुआ है और इसका लाभ के ही?
1: किसान भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जीएम फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कि किसी अन्य स्रोत से, चाहे हम उसको बैक्टीरिया से लें या किसी अन्य प्लांट से लें, किसी अन्य जीव से लें, उनके जीनों को हम जो कि किसी वांछित करेक्टर्स के लिए, वांछित गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीएम फसल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है बीटी कपास और जिसमें एक जीवाणु होता है बेसिलस थुरिंजेसिस, उसमें जो स्थित जो जीन होता है उसके द्वारा बीटी कपास को कीटरोधी बनाया जाता है और ये आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो है जीएम क्रॉप है। इसके अलावा कुछ सूखा रोधी किस्में होती हैं, कुछ लवण सहनशील किस्में भी इस तरह से जीएम क्रॉप्स के रूप में विकसित की जा चुकी हैं।
0: डॉक्टर साहब, जो जैव प्रौद्योगिकी है इसके द्वारा कौन कौन सी फसलें विकसित करी गई?
1: देखो, जैव प्रौद्योगिकी के लिए कुछ किस्में विकसित कर ली गई हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण है उसका है बीटी कपास। जैसे अभी मैंने इसमें भी बताया था कि जो बीटी कपास होती है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें क्या होता है कि कपास में एक पिंक बॉल वर्म जो होता है वो कीड़ा अटैक करता है और जिससे इस फसल को नुकसान होता है। तो इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस फसल में जो क्राई जीन होता है, जो बैक्टीरिया होता है जीन उत्पन्न करता है जिसको कि हम क्राइजीन कहते हैं, उसके द्वारा इस फसल को जब ये लार्वा या जो पिंक पॉलवर्म इस फसल को खाता है तो उसके ये जो प्रोटीन है वो उसके ग्लट में जाकर के और उसको नुकसान पहुंचाता है और जिससे जो इस फसल को है कीटरोधी बनाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है जीएम फसल का वो है गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी है और इसमें जो चावल है इसमें सबसे अच्छा है कि ये न्यूट्रिटिव है, इसमें विटामिन ए की बहुत ज्यादा मात्रा होती है जिससे जो कुपोषण की समस्या उससे निजात मिल सके और इसका जो चावल का जो रंग होता है वो सुनहरा होता है, इसी वजह से इसका नाम गोल्डन राइस रखा गया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है जीएम मक्का और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और इसमें भी ये जो क्रॉप है ये सूखे के प्रति सहिष्णु है, तो जहां पर क्लाइमेट चेंज होता है या जहां वर्षा की कमी होती है वहां पर इस फसल को उगा करके अच्छी इनकम किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब, जो कि खाद्य सुरक्षा की बात आवे है, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा के खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करी जाए इसके?
1: बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि जो हमारी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और जो फूड की कमी होती जा रही है, तो ये जीएम फसलें उस सुरक्षा की दृष्टि से काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जैसे कि बीटी कपास, अब बीटी कपास

0: कपास के रूप में यदि हम देखें तो ये जो होती है कीटरोधी किस्में। इसके साथ साथ इसके उपयोग से क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स में या इंसेक्टिसाइड में जो किसान जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो खर्च कर देते हैं उससे उसको निजात मिल सकती है, और दूसरा जो कीटनाशकों के उपयोग से जो पर्यावरण में जो असंतुलन आता है, जो पर्यावरण में गिरावट आती है या पर्यावरण के जो संतुलन है वो नहीं रह पाता, तो इसके उपयोग से इससे भी हमें बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो उदाहरण के लिए यदि हम बताएं कि किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, तो जो इकरी सेट है जो कि हैदराबाद में है उसने चने की सूखे के प्रति सहनशील, मूंगफली की भी एक किस्म दी है जो कि पर्ण रोग के प्रति प्रतिरोधी है, बाजरा की ऐसी किस्में तैयार कर ली है कि जिनमें आयरन और जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि जो है खाद्य सुरक्षा के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हमें मिल सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब जगह किसान भाइयों के लिए आप बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो किसानों के लिए कई लाभ आएगा।
0: देखो किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और कीट व रोग प्रतिरोधक फसलें मिलती हैं, जो कि अभी मैं बता ही चुकी हूँ। इससे जो होती है इनकी जो फसलों को उगाने की जो उत्पादन लागत होती है वो भी कम हो जाती है, और जब उत्पादन लागत कम हो जाती है तो किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जो इन फसलों के प्रयोग से जो हम हानिकारक कीटों के प्रयोग से बच जाते हैं, तो इससे हम पर्यावरण की अनुकूल प्रौद्योगिकी भी विकसित कर लेते हैं, हम अपने पर्यावरण को भी अनुकूल बना देते हैं। तो जैसे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमने बीटी कपास की बात करी, और इसके अलावा जो अभी हमने गोल्डन राइस की बात करी कि जिसके उपयोग से या जो गोल्डन राइस जो किस्म पैदा की गई है उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, तो इससे जो पोषक तत्वों में या जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो खराब मौसम के लिए कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कई बार उच्च तापमान की वजह से भी जो है फसलों को नुकसान हो जाता है, इन सभी खराब मौसम, सूखा और अत्यधिक तापमान को सहनशील करने वाली फसलें भी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कर ली गई है, और इसकी वजह से ही जो है किसान जो है इसका लाभ अपनी खेती में कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब जो अपना खेत हुए बिकमाए जो खेत की मिट्टी हुए वह फसल उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, तो मृदा की जो उपजाऊपन क्षमता है बिना बढ़ावा के वास्ते भी जो है जैव प्रौद्योगिकी सहायक हो सकेगी।
0: बिल्कुल सही सवाल किया आपने, जो मृदा की जो उर्वरता है वो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। देखो अब किसी भी फसल को बढ़ने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम माइक्रोबियल जो बायोटेक्नोलॉजी है ये मृदा सुधार का एक बहुत बड़ा पहलू है, तो जो हमारे कुछ चने वाली फसलें होती हैं या जिनको कहना चाहिए जो पल्स क्रॉप होती हैं, उनके जो जड़ों में क्या होते हैं माइक्रोबियल कवक और नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने वाले जीवाणु होते हैं, और जिससे कि है इस तरह से हम अपने जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को है या नाइट्रोजन की आपूर्ति है उसको हम इन जीवाणुओं द्वारा कम कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह के फसलों में से जो जीन को निकाल करके ये अनाज वाली फसलों में भी ट्रांसफर किया गया है, जिससे ये फसलें भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके या जो सहसंबंध बना सके पौधों में और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके।
1: तो डॉक्टर साहब इको द्वारा जो है बायो पेस्टिसाइड्स को निर्माण की प्रकार से हुआ है?
0: जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं ये जो अपने सिंथेटिक पेस्टिसाइड होते हैं उनका एक विकल्प होता है। जो हम सिंथेटिक बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये वातावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, साथ ही किसानों को इसकी उच्च रेट भी देनी पड़ती है। तो इसके विकल्प के रूप में जो पौधों में या जीवों में और जंतुओं में जो इस तरह के रसायन होते हैं उनको जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको एक्सट्रैक्ट करके और बायो पेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है, जिसमें जो फसल है जैसे नीम है, पायरेथ्रम है, कपास है और तंबाकू है आदि जो वनस्पति, ये जो बायो पेस्टिसाइड है ये कम खर्चीले भी होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, तो इस तरह से इनको किसानों को इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि इनका जो खर्चा आता है वो भी कम आता है और ये फसलों में बहुत अधिक कारगर साबित हो रहे हैं।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत चौकी, देखो आप बात बताया जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, किसान का जो खेत वी की मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता बढ़ावा में भी सहायक है और खाद्य सुरक्षा ने भी सुनिश्चित करा है, तो इसके अलावा अब चलता जो माँ का किसान भाई ही बान ने इस विषय पर अपनी तरफ से और कोई बात ये चर्चा में रहेगी तो आप अपनी तरफ से कहना चाहो तो आप बता सको।
0: देखिए किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी वैसे एक महंगी तकनीक है, किसानों के लिए महंगी तकनीक है, लेकिन यदि हम इस तकनीक का उपयोग करके अपने जो फसल है यदि उसमें वैज्ञानिक उसमें वांछित गुणों का उपयोग कर लें, अपने जो जो समस्याएं आ रही हैं चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे न्यूट्रिशन की हो, चाहे और दूसरी समस्या हो जो

0: प्रौद्योगिकी हो, इस तरह की यदि हम फसलें तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जैव प्रौद्योगिकी है वो बहुत अच्छी तकनीक है। और मैं तो चाहूंगी कि किसानों को भी इस तकनीक से रूबरू होना चाहिए, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको अपनाना चाहिए।
1: तो किसान माया, आई जानकारी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और आ जानकारी आपने दी डॉक्टर सुनीता गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं पादप कारिकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से। आप आई और किसान भाई ने अति चौकी और उपयोगी जानकारी दी, इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई धन्यवाद भी थन भी घनो घनो की इतनी बढ़िया सुनीता गुप्ता जी से जानकारी दिलाया जीव प्रौद्योगिकी को कृषि में महत्व है। और देखो वहां का उद्देश्य भी यही है कि वहां का किसान भाई तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानी चाहिए उसी को आपने किसान भाई पूर्व पूर्व फायदे बिठावे। और देखो इतनी बड़ी जानकारी दिलाया तो आज जानकारी सुखी सुखी को ने सुना एक प्यारो सो लोकगीत, लेकिन बी का पहला सुना ये दो संदेश।
3: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉप रोड, टॉप फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
4: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
5: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
4: वो कैसे?
5: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
4: कॉल 1800 1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

0: मुल्तान खान का एक गीत के साथ ही खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक ही साथ ही अश्विनी कुमार सेन
1: और रेणु ने
0: दो इजाजत और करा
1: राम राम साहब।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेतीबाड़ी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, अब हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम शख्सियत।
1: नमस्कार, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में मैं अर्चना जैन आप सभी का अभिनंदन करती हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वाद्य यंत्रों की एक समृद्ध परंपरा चली आ रही है, जिनसे भावनाओं का अद्भुत संचार होता है, जिनका मुख्य कार्य गायन के माध्यम से अभिव्यक्त किए जा रहे भावों की प्रस्तुति को सुंदर बनाना है। जिस भाव और रस को शब्द और मानव कंठ व्यक्त करते हैं, उसी भाव को आकर्षक ढंग से प्रकट करने का प्रयास इन वाद्य यंत्रों के द्वारा होता है, जिनके अभाव में संगीत अपूर्ण सा नजर आता है। ऐसा ही एक उत्कृष्ट श्रेणी का वाद्य यंत्र है भपंग, जो हमारे राजस्थान के अलवर जिले का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, जिसके द्वारा राजा भर्तृहरि, भक्त पूरणमल और हीर रांझा इत्यादि की लोक कथाएं आज भी अरावली की वादियों में गूंजती हैं। इस विलुप्त होती लोक वाद्य परंपरा को, राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले

0: प्रसिद्ध लोक कलाकार जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, श्रीमान गफरुद्दीन मेवाती जी आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। गफरुद्दीन मेवाती जी राजस्थान के उन चुनिंदा लोक कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने इस विलुप्त होती भपंग वादन कला को अपनी पहचान और साधना का माध्यम बनाया। साथ ही गांव ढाणी से लेकर बड़े मंचों तक राजस्थानी संस्कृति को जीवंत बनाए रखा। गफरुद्दीन मेवाती जी, आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम गफरुद्दीन मेवाती जोगी है। मैं राजस्थान का अलवर जिले में रहता हूँ। इत दिल्ली उत आग रो ब्याना और बैराठ इता चकल्ला बीच में बसे मेरी ब्रज रंग मेवा।
0: क्या बात है।
1: मैं आपको एक थोड़ा सा मेवात की लोकगीत सुनाता हूँ जो उसकी मिली जुली संस्कृति के उस पे आता है।
0: जी।
1: अर काया पे अभिमानी, अर काया पे अभिमानी, तू या माया पे बेही मानी रे मत करियो मेरा ना।

0: या मैं गई मनी मत कर लो मेरा का या मैं रे मनी मत कर लो मेरा। अरे ये माया तेरे संग न चलेगी, ये माया तेरे ओ संग न चलेगी, काया एक दिन मिट्टी में मिलेगी, काया तेरी मिट्टी में मिलेगी। तू जो बुराई कर ले बनाई हो, तू जो बुराई कर ले बनाई मुझे चीजें दिखानी मत करियो राजिया का, या पे अबे मानी मत करियो मेरा राजिया।
1: क्या बात है, भपंग वादन के साथ आपके गायन की बहुत सुंदर प्रस्तुति, और इसी के लिए हाल ही में पद्मश्री सम्मान से आपको केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, तो सर्वप्रथम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जब इस सम्मान की प्राप्ति आपको हुई या इस सम्मान की घोषणा जब आपने सुनी, तो सबसे पहला अनुभव आपका क्या रहा?
2: जिस वक्त घोषणा सुनी उस वक्त मैं अलवर में ही सूचना केंद्र में कार्यक्रम था मेरा, भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन मंत्री हैं
1: जी
2: भारत सरकार के, उनका वंदे मातरम का कार्यक्रम कर रहा था मैं, तो वहां लोगों ने मुझे बताया कि चैनल है उस पर आपका नाम चल रहा है
1: जी।
2: भाई कहां से? नहीं आपका नाम चल रहा है उससे हमने देखा भी, तो सुन के बहुत खुशी हुई। भारत सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ जिस तरह से मुझे दिलवाया दिया।
1: राष्ट्रपति भवन के लिए आपका बुलावा आया
2: जी? राष्ट्रपति भवन देखा ही नहीं था कभी, हमारी कितनी पीढ़ी गुजर गई, हमारे और 10 पीढ़ी गुजर चुकी संगीत में
1: जी।
2: पर दादे थे फिर उनके दादे थे हमारे पिता पिताजी
1: जी,
2: वो सारे लोग खूब उन्होंने काम किया है जिस क्षेत्र में संगीत के में। 11वीं 12वीं पीढ़ी मेरी थी जब से हमारा देश में हम संगीत का काम कर रहे थे हमारा परिवार, उसमें जाकर के मेरा नाम आया इसमें। धन्यवादी योगी,
1: बड़ा ही अविस्मरणीय अनुभव ये आपका रहा। संगीत से आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा से रही है
2: जी, विरासत मेरी थी
1: जी, तो इसके बारे में हमें बताइए कि भपंग से जुड़ाव आपका शुरू से रहा है।
2: ये जो भपंग का जुड़ाव हमारा ऐसे कि हमारा काम योगी है, हमारा गांव-गांव में मांगने खाने का काम था पहले, तो हमारा कोई भी बच्चा हो जो 3 साल का होता है 3.5 साल का होता है उसको साथ लगा लेते हैं हम
1: जी,
2: और उसके साथ लेकर के जोगी सारंगी और भपंग का एक मेल है संगीत का, गांव में घर का भला हम बनाए रखे ऊपर वाला तरह को ये देर वो देर भजन गाय करते थे हम गांव जाकर के, सुबह जाते थे पिताजी तो उनके साथ में भपंग बजाते थे, पिताजी सारंगी बजाते थे जोगिया, तो जैसे यार पहुंचते तो अजी घर आ गए लक्ष्मण राम पूरी मेरा आनंद भाई, वो घरे

0: గయల చుమే
1: इस तरीके से जो जाते थे तो कोई आटा लाती थी, कोई अनाज लाती है, कोई सब्जी दे देती घर से। इस तरीके से घर का सामान, घर चलाने के लिए परिवार का, हम गांव से जाकर के।
2: तो भपंग वादन से ये जुड़ाव आपका निरंतर चलता रहा और बाद में बहुत से लोक गीतों और गाथाओं को भी इसके माध्यम से गाया जाने लगा।
1: जी,
2: उस बारे में भी हमें बताइए।
1: जो बीच में बड़े जाके हुए तो गाँव में पहले और कोई मनोरंजन का कोई साधन नहीं था
2: जी।
1: तो ब्याह शादियों में भी पिताजियों के बुलावा हमारे आने लगे। तो उस जमाने में जब आता था तो पहले लिखी आती थी शादियों के कार्ड में, जो आती थी लगन आती थी उसमें लिखी आती थी, अगर इस तारीख में कैथवाड़े के जोगी बुद्ध सिंह की पार्टी खाली हो तो शादी की डेट रख लेना, इस तारीख को नहीं बढ़ा देना आगे सब
2: जी,
1: इसमें हम शादी नहीं करेंगे जब तक उनकी पार्टी हमारी शादी में नहीं आएगी।
2: एक विशिष्ट स्थान बनने लगा आपका इस क्षेत्र में।
1: बिल्कुल, संगीत नृत्य में वो था गाँव में पहले, और उसके बाद में फिर हम ब्याह शादी में जैसे तीन दिन बारात होती तो तीन बारात अटेंड करते थे उस जमाने में, बारात तो उनमें जाके गाया करते थे
2: जी। जो हमारी मेवाती लोक संस्कृति है और ब्रज संस्कृति है
1: जी, तो इन दोनों में ही हमारे यहाँ जैसे इस क्षेत्र में, हमारे मेवात क्षेत्र में भक्त पुरमल का किस्सा
2: जी,
1: और महादेव जी ब्यावला कृष्ण जी की जो बात थी चंद्रावल गुजरी वाले, मेरे ब्रज भूम बाकी बसे जहाँ श्याम सलोने कान, लूटल लग गए गुजरी सखी वहाँ प्रगट हुए नादान। हाँ समझा ले तेरे या लाला है मैया, समझा ले तेरा या काना है रे मोहे छेदे रोज़ नगरिया में, समझा ले अपने काना है रे, समझा ले अपना काना है मोहे छेदे रोज़ नगरिया में, वो समझा ले अपना काना है रे मोहे छेदे रोज़ नगरिया में, वो मैं तो जल भर में को जा रही रे मैया, जल भरने को जा रही थी।

0: జులము గోదాలోనే మేరి
1: क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत प्रस्तुति आप भपंग वादन के साथ हमारे श्रोता आज आपकी सुन रहे हैं। तो बहुत ही मनोरंजन का अच्छा साधन ये रहा है और इस भपंग वादन में आपको एक विशिष्ट पहचान भी दी है, साथ ही बहुत सी उपलब्धियां और सम्मान भी आपने इसके द्वारा अर्जित किए हैं, उनके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
2: इसमें सर हमें पहले तो हमारे यहाँ साक्षरता के कार्यक्रम चलते हैं हमारे राजस्थान में, हमने उसमें साक्षरता के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों में साथ दिया, जैसे कि गाँव में पढ़ा जो अनपढ़ बच्चे थे उनको और बड़े लोगों को भी उनको शिक्षा से जोड़ा गया, नए वातावरण के रूप में बनाने के रूप में उसमें कार्यक्रम में पब्लिक को इकट्ठा करना, फिर उनको शिक्षा के बारे में बताना, हम उसमें काम किया इसी के माध्यम से बपन के साथ में हमने।
1: और बहुत से सम्मान भी आपको इस प्राप्त हुए हैं,
2: बहुत मिले हैं। अपने राज्यपाल सम्मान मिला मुझे राजस्थान से, प्रधानमंत्री भैरव सिंह बाबा थे जब उन्होंने सम्मानित किया मुझे मुख्यमंत्री साहब ने, उसके बाद फिर हम इसी से ही हमें 2016 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य का जो वो था अवार्ड वो दिया
1: जी,
2: फिर इसी से मुझे फिर 2022 में संगीत नाटक अकादमी सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का अवार्ड मिला
1: जी,
2: और उसके बाद फिर हम इसमें चलते रहे फिर फोर विंग में कार्यक्रम होते रहे, आए चले गए, आए पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के थ्रू कार्यक्रम बहुत हुए, उनमें पूरा भारत घूमा
1: जी,
2: और फोर विंग विदेशों में 45-46 देश विदेशों में गए हैं
1: जी
2: हाँ, और इसी के माध्यम भपंग के युद्ध से पांडवों का करा महाभारत 48 घंटे का मैं गाता हूँ,
1: अच्छा
2: भरत पोंगल का किस्सा गाता हूँ
1: जी,
2: और अपने लोक रामायण है जिसको हम लंका चढ़ाई कहते हैं वो भी मैं भपंग के साथ ही गाते हैं
1: जी
2: हाँ, और कृष्ण जी के भजन और शिव जी का ब्यावला ये सब गायकी हम भपंग के साथ ही गाते हैं, जिसमें जो है सरंगी हारमोनियम ढोलक बपन नकारा ये सारे साजे से

0: हूँ आज रहते हैं।
1: विदेशों तक भी आपकी ये भपंग वादन की प्रस्तुति रही, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: जी हमें ये इसके सब हर जी गए हमारा विदेशों में, जहाँ भी गए वहाँ भपंग का बहुत अच्छा वो रहा, और इसी के माध्यम से हमने महाराणी एलिजाबेथ के जन्मदिन पर एलिजाबेथ हॉल लंदन में अपना कार्यक्रम किया
1: जी,
0: और वहाँ लोगों ने सराहा, बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है, इस विलुप्त होती अनमोल विरासत को आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसको जीवंत रख पाएंगी, या इस ओर आपके कुछ प्रयास हम जानना चाहेंगे?
0: इसको जैसे मुझे ये अवार्ड मिले हैं सांस्कृतिक मंत्रालय से, संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है, तो बच्चों में उसी वक्त ललक पैदा हो गई थी
1: जी,
0: उनको 1,00,000 रुपए मिला है और राष्ट्रपति साहब ने इनको वो दिया है, स्मृति चिन्ह दिया है, सम्मानित किया है साथ में, और हम भी करेंगे ऐसे जो हम भी लेंगे
1: जी,
0: तो बच्चों में वो ललक पैदा हुई। और अब जो दूसरा जो अवार्ड मिला है पद्मश्री, अब तो लोग बहुत सीखने के लिए तैयार हो गए, लोग आने के लिए, तो पहले मैंने शिकायत दी थी,
1: बहुत अच्छी बात,
0: 35 लोग मैंने पहले शिकायत दी थे
1: जी,
0: चल रहे हैं, और अब और लोगों में ज्यादा ललक पैदा हुई है
1: जी। गफरुद्दीन जी, भपंग वादन ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, विश्वव्यापी ख्याति आपने इसके द्वारा अर्जित की है, तो इस ओर आपकी कितनी साधना रही, कैसा रियाज आप करते हैं, ये हमारे श्रोता आज जरूर जानना चाहेंगे।
0: ये हमारा सर सबसे ज्यादा रियाज तो ये रहता है कि हम गांव-गांव जो जाते हैं ना, दिन में सारे दिन गांवों में घूमते, रियाज ही होता रहता है
1: हमारा, आज भी
0: चलता है
1: जी।
0: अब थोड़ा इसे इतना हो गया कि अब हम जैसे होटलों में या स्टेजों पर कार्यक्रम करते हैं
1: जी,
0: अब घर घर इतना नहीं जाते जो पहले जाया करते थे
1: जी,
0: नहीं हमारा कम से कम 3-4 घंटे का तो रियाज दिल्ली का गाँवों में रहा करता था। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जिस किसी गांव में 5 आदमी बैठे पाए जाते थे, चौपाल वो बैठे रहते थे गांवों में
1: जी,
0: तो उस वक्त हम गा गा कर सुनाते थे, जेवाती में वो सुना रहा हूँ। अरे
2: खेती गए वाय जान रे निबज आई जाने गोभी, लाला खेती गए दी वाय जान निबज आई जाने भी गोभी, राजन राज गए वाय जान रे जहां के राजा लोभी, राज गए वाय जान रे जहां के राजा लोभी, जब लूख गए दीवान जिलन के बुगला बसना, देखी रूख गए वाय जानो जहां के बुगला बसना, राजब लोग गए वाय जान रे जहां के मुकदम भी हंसना, जब ये लोग गए वाय जान रा जहां के मुकदम

0: da mão, Racional. इस तरीके से हम गांवों में चौपालों पर जब आदमी बैठे पाते थे हमें उनके सामने गाया करते थे, कोई 5 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 10 रुपया देता जिससे हमारे घर का खर्चा चलता था।
1: जी, बड़ी साधना आपकी ये रही है और बड़े हर्ष की बात भी है कि आज हमारा जो आकाशवाणी का स्टूडियो आपका मंच बन गया है और हम आपका ये गायन सुन पा रहे हैं। तो कोई ऐसी भी मंच प्रस्तुति या कोई यादगार पल आपके जहन में है जो एक कलाकार के रूप में आपको बहुत प्रभावित कर गया हो?
0: जी हाँ, जब जिस वक्त हमें बहुत खुशी हुई जब सबसे पहले हम एक दिल्ली में कार्यक्रम था वहाँ किया, मुंबई में था क्रॉस मैदान में
1: जी
0: एक वहाँ किया, तो यह 2-3 जगह जो कार्यक्रम होता बहुत खुशी हुई। गांव से जाकर के वहाँ मैंने जो ये आकर के जो हुआ

0: हम हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे।
1: क्या बात,
0: जो मेल बढ़ाए आपस में वो धर्म ईमान रखेंगे। ये शंख बजाए भाईचारे का और अमन की एक अजान रखेंगे। ये काबा भी रखेंगे और हम काशी भी रखेंगे, मगर सबसे पहले अपना हिंदुस्तान रखेंगे।
1: जी क्या,
0: अरे हे रही है टर ही टर, वो मच रही है टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर ही टर, हे रहिए टर ही टर, मच रहिए टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रही टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर ही टर। लाल करेगी ये देश में जो राज करते वह है भी मिस्टर, वह संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर, हाँ संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर, ये फिल्मों में जो काम करते वह है एक्टर, अब जिले के अफसर को कहते अब जिले के अफसर को कहते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर ही टर, दे रहिए टर ही टर, मच रहिए टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर ही टर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर। स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ावे मास्टर, वही मास्टरों को चेक करते वही इंस्पेक्टर, हर कमरा में लड़का पाता, हर कमरा में लड़का पाता वह है मॉनिटर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटर, या दुनिया में देख रहे रहिए टर्मिटर। हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टरों के नीचे रहते वह है कंप्यूटर, गांव के आदमी सब कंप्यूटर समझ लेते हम कंप्यूटर के हैं
1: जी।
0: हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टर, ये डॉक्टरों के नीचे रहते वह है कंप्यूटर, ये गौरी की शादी में दूल्हे, गौरी की शादी में दूल्हे उसे सिस्टर, या दुनिया में देख रहे रहिए कभी तर, या दुनिया में देख रहे रहिए कभी। इस तरीके से पेश करते थे जब लोग बहुत खुश हुआ करते थे।
1: जीवन की रोजमर्रा की सच्चाइयों को अपने इस अनूठे वाद्य यंत्र और गायन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते रहे। तो अब यहाँ मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपका इसके पीछे जीवन मंत्र क्या रहा जिसने आपको प्रेरित किया, लगातार इस पर आप बने हुए हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: मेरे पिताजी थे जो अनपढ़ थे
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि बेटा मैंने आपको पढ़ाया तो थोड़ा कोई वसूल सर्विस में लग जा, इस चीज में गुजार नहीं होता परिवार का, मैंने किया है। वो बोले मैंने ठीक है, जब पिताजी का नाम देखा मैंने
1: जी,
0: लोगों को जो बता रहा था आपको कुछ देर पहले बताया था आपको, तो मैं शादियों में लिख के आता था अगर बुद्ध सिंह जोगी की पार्टी इस तारीख में मिले खाली तो शादी करना, नहीं तो आगे बढ़ा देना
1: जी।
0: मैं बोला अगर मैं इस लाइन को छोड़कर तो मैं इसमें जाऊंगा तो मेरे बाप का नाम तो डूब जाएगा
1: जी, इस परंपरा को आपको आगे ले जाना,
0: परंपरा को आगे ले जाने के लिए मैं इसके साथ में लगा रहा
1: जी।
0: और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारा इतना मांग थी और इतनी वजह थी कि जो हम गाते हैं तो इनके वजह से, इनके माध्यम से गांवों में झगड़ा जो होते थे आपस में तो उनसे भी वो उसका फैसला हो जाया करता था। जैसे कि उसमें पंडों के कड़े में महाभारत में आता है, उसमें अर्जुन जिस वक्त चौपड़ से अर्घ खेलते हैं, चौपड़ से अर्घ खेलने के बाद में जब अर्जुन ज्यादा गमगीन हो जाता है, भीम बोला कि तूने किसी भाई से नहीं पूछा और चौपड़ से अर्घ खेलने के लिए बैठ गया और आज हमारा पूरा आपने एक साल का वनवास ले लिया है
1: जी,
0: और मैं ये चाहता हूँ कि तू ही जाओ वहां वनवास में, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा।
1: हाँ।
0: वो छोड़ करके चला गया, वो बोला मेरा भाई

0: पूछ काटा हूं, मुझे कहता भाई समझ जाए मेरी बात को। तो जब उसने कहा, और भीम से दुर्योधन से जाकर के कहता है, सुन दुर्योधन तो सु कहूं बड़ो त्योहारो नाम, बैठे हम सु भूम बोझन मरे तेरो ले हटना पर गांव। भाई अगर पूरा शहर बसा हुआ है आपका हतनापुर, पांडव अर्जुन जान कहता है किससे, मुझसे दुर्योधन से, कि पूरा गांव आपका बसा पड़ा है उससे तो तेरा शहर कोई बोझन नहीं मर रही है जमीन, अगर हमसे वजन से बोझन मर रही है, इसको वजन लग रहा है, तो भाई हम आपके गांव छोड़ के चले जाएंगे।
1: कहने की ये कला थी
0: तो इस आधार पर गांवों के फैसले हो जाया करते, बड़े लोग अरे नहीं यार भाई
1: तुम्हारा
0: भाई भाई करबानी सुलाखना जिनकी गहरी मूली छाए, जे भाई बट बोलना फिर भी अपनी बाह बाएं कहते अपनी भुजा अपने मतलब अपना भाई जी, तो भाई जो साथ देता है वो कोई दूसरा साथ नहीं देता
1: जी,
0: उसे वो कहता है कौन दुर्योधन कहता है अर्जुन के। तो ऐसे जो इसमें दोहे हैं तो उसके माध्यम पर फैसला हो जाया करते थे पंचायतों में, पंचायत टूट जाया करती थी गांवों में, तो इसलिए इसको और ज्यादा लोग पसंद किया करते थे।
1: मनोरंजन का ही ये साधन नहीं था कि बल्कि ये मतलब बड़े से बड़े झगड़ों को भी बड़े ही सरल शब्दों में इससे कह दिया जाता था। गफरुद्दीन जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी पहली प्रस्तुति कहाँ रही और विभिन्न मंचों जहाँ आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं उसमें एक विस्मरणीय मंच आपका कौन सा रहा?
0: पर्यटन कला सांस्कृतिक विभाग राजस्थान सरकार का कार्यक्रम था मेरा राजस्थान दिवस का जयपुर में, उसी वक्त मुझे वहां से ले जाएगा जयपुर आकाशवाणी पे
1: जी।
0: सबसे पहले पांडव अखाड़ा मैंने वहां सुनाया उन लोगों को, तो उसमें मैंने जो सुनाया था वो आपको मैं थोड़ा सा पेश कर रहा हूँ पांडव अखाड़े से। अरे वे सतरे से सताओ सियो, अरे लोगों वे बरस भी गया है बीत, जानू पंडू।

0: ਚਤਰੇ ਸੋਲ ਸਤਾਸਿਆ ਬਰਸ ਗਲਾ ਹੈ ਬਿੱਤ ਤੇ ਜਾਣੂ ਪੰਜੂਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਕੀ ਜਗਤ ਕਰੇ ਪਰ ਪੀਤ ਕਹਾਂ ਕੇ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਤੇ ਹਤਨਾਪੁਰ ਕੇ ਹਤਨਾਪੁਰ ਮੇ ਕੌਣ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਰੂਰ ਪਾਂਡੂ
1: ਅਬ ਰਥ ਜੋੜ ਉਹ ਚਲੇ ਜੀ ਹਰ ਬਨ ਕੋ ਅਬ ਰਥ ਜੋੜ ਚਲੇ ਜੀ ਹਰ ਬਨ ਕੋ ਅਬ ਰਥ ਜੋੜ ਜਬ ਰਥ ਹੋਏ ਬਾਗ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਬ ਰਥ ਹੋਏ ਬਾਗ ਕੇ ਬੋਲੇ ਦਸ਼ਰਥ ਪ੍ਰਾਣੋ ਤਜੇ ਰਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਕੋ ਅਬ ਰਥ ਜੋੜ ਚਲੇ ਜੀ ਹਰ ਬਨ ਕੋ ਅਬ ਰਥ ਜੋੜ।
2: गफरुद्दीन जी एक प्रसंग भी हम सुनते हैं घुड़छड़ी मेव खान जी का, वो भी आप हमारे श्रोताओं को गाकर सुनाएंगे अपने भपंग के माध्यम से।
3: घुड़छड़ी मेव खान अपने अलवर के ही बाघोड़ा के क्षेत्र में गांव लगता है एक, उस वहां के रहने वाले थे हमारे।
0: अला मैं तो पढ़ के बिस्मिल्लाह रे गुरु सिताज भी मनाऊं बाघोड़ो तलवंड रे अचल गुणवा का दे गाऊं मेरो बाघोड़ो भी बलवान अचल गुणवा का गाऊं बाघोड़ो तलवंड रे अचल गुणवा का दे गाऊं के बिच मिलायो गुरु सुताज भी मनाऊ मेरो बाघोड़ो भी बलवंड रे अचल गुणवा का भी गाऊं।
4: तो जानना अंग्रेज को क्या तार काटते हैं, क्या खबर जाती है लंदन तोरी की हवा आगे भी चलती हुई है।
2: अंत में गफरुद्दीन जी हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे युवा पीढ़ी को आकाशवाणी के माध्यम से आप क्या संदेश देना।

0: चाहेंगे।
1: मैं जब से आकाशवाणी जुड़ा हूं पहली बार तो मुझे इससे बहुत सहूलत मिली, बहुत मेरा नाम हुआ। गांव में लोग दिनकर रेक्टर रेडियो चले थे उस जमाने में, घर घर में रेडियो हो गए थे, और जो अपना यहाँ अलवर का रेडियो का प्रसारण होता था सारे लोग सुनते थे बैठ करके शाम 7 बजे एरिए में पूरे निवात में, और इससे बहुत नाम हुआ
0: जी
1: हमारा। जब हमारी बात आती थी ये पंडुओं कड़ा और घुर्ची में खाओ की बात आती थी, इनको जब सुनते थे तो लोग बहुत जहां भी जाते थे आप जो हुआ गया था वो सुनाइए, शादियों में उनकी मांग होने लगी थी
0: जी,
1: इससे
0: जी।
1: बहुत नाम हुआ। और मैं आज भी पीढ़ी से कहना चाहता हूँ नशा से दूर रहे
0: जी।
1: और आगे का काम ऐसे करो जो जीवन में नाम हो आगे बढ़ने का, जिसमें इज्जत मिले समाज को देश को, उस काम को करे और नशे के काम को छोड़े और गलत कामों से अलग हटे। तो और इस विधा को जो मैंने मुझे भी इसी तरीके से मैंने लगन लगाई थी भप्पन के साथ में जो मैं बजा रहा हूं, तो जब ही नाम हुआ जब मैंने लगन से गांव गांव घर घर जा करके और शहरों में जगह जगह मैंने इसको बजाया और लोगों को सुनाया, तो उससे जैसे मेरा नाम हुआ ऐसे ही लोगों का नाम हो सकता है। अपने अच्छी उस पर लगन पे चलेंगे, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा कोई वो ढूंढे अपने लिए, टर्निंग वर्निंग करें, कौन कौन सी वो टर्निंग होती है जिनमें कोई फैक्ट्रियों में लगता है, कोई इंजीनियर बने जैसे ये इस तरीके की वो करें, कोई डिप्लोमा ये, तो उनसे नाम हो सकता है हमारा देश का
0: जी।
1: हमारे प्रांत का। तो मैं ये एक अपने भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से एक मांग करता हूं कि मुझे एक आवासीय विद्यालय बनवाया जाए
0: जी,
1: जिसमें बच्चों को वहीं रख करके और गुरु शिष्य परंपरा के तहत जैसे वो कर सको, तो उस तरीके से बच्चों को वहीं रखा जाए, उनको सिखाया जाए और फिर शिक्षा भी दी जाए, उसके साथ साथ
0: जी।
1: पढ़ाई भी नहीं होती बच्चों की, और उसमें आकर के वो लोग एक घंटा दो घंटे के लिए मेरे पास आने लोग सीखे
0: जी।
1: तो मैं सब लोगों से राम राम और नमस्कार।

0: आपने सुना कार्यक्रम शख्सियत, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अब सुनिए कार्यक्रम स्पोर्ट स्कैन। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हुआ।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार फिर मौजूद हूं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे जापान एशियाई खेलों की, जिनका भव्य समापन समारोह के साथ आज हो गया है समापन। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा ने किया भारतीय दल का नेतृत्व। भारत ने 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए हासिल किया है चौथा स्थान। और कार्यक्रम में बात की जाएगी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कल खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच की, जहां भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। और घरेलू क्रिकेट में रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को हराकर ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब कर लिया है अपने नाम। तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात एशियाई खेलों 2026 की, जो जापान के नगोया में आज आधिकारिक रूप से संपन्न हो गए। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपी गई। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत के लिए ये मौका कई मायनों में खास रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने

0: प्रदर्शन की बदौलत न सिर्फ पदक तालिका में देश का मान बढ़ाया बल्कि कई खेलों में वर्षों से चले आ रहे पदकों का सूखा समाप्त किया। ट्रैक एंड फील्ड से लेकर अपने सटीक निशानों तक कई रिकॉर्डों को ध्वस्त किया। साथ ही कबड्डी, क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों में जहां भारत की रीढ़ कही जाती थी, भारत और महिला और पुरुष टीमों ने कई नए कीर्तिमानों को स्थापित किया।
1: इंडिया विल विन गोल्ड, इंडिया हैज वन गोल्ड इन द वुमेन्स टीम रिकर्व इवेंट, अ फीट नेवर डन बिफोर, सेलिब्रेट दिस विन, ब्रीथ इन दिस मोमेंट, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, फर्स्ट टाइम चैंपियंस, टू यंगस्टर्स इन कीर्ति एंड कुमकुम अलोंग विद अंकिता भगत आर स्टेपिंग ऑन टू द प्राइम पोडियम विद गोल्ड।
2: हम तो गए हैं और ये मैच भारत ने जीत लिया और इसी के साथ यहाँ आ गया एक और गोल्ड मेडल। भारत ने ये मुकाबला जीत के एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। यहाँ
3: हिट्स द टारगेट, सो वी हैव गॉट गोल्ड विद अ गोल्ड इन द वुमेन्स इंडिविजुअल ट्रैप इवेंट। दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक।
4: दैट्स द टच एंड इट गोज, शी गेट्स इट। प्रणवी शॉर्ट ओवर्स, इवन पार ऑन द डे, 15 अंडर, शी फिनिशेस ओवरऑल इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर इन गोल्फ।
2: एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आ गया है प्रभु। पहली बार हुआ है कि मेन और वुमेन दोनों हॉकी टीम्स ने एक साथ गोल्ड मेडल जीते हों। लॉस एंजलिस वालों, स्वागत की तैयारी कर लो।
5: Now she comes down the track but misses a straight ball. That will seal the deal. India clinch gold in the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026 and make it 2-2.
2: नजरे रखिए विद्या रामराज, क्या गोल्ड मेडल आ रहा है? पिछली बार सिल्वर था, इस बार गोल्ड मेडल आ गया है प्रभु। किताबों में लिखा जाएगा सुजीत कलकल के नाम के साथ चलता रहेगा। ट्रेल कर रहे थे लेकिन कैसी वापसी की और एक गोल्ड मेडल भारत के लिए दिलवा दिया सुजीत कलकल। असंभव वापसी, असंभव वापसी को उन्होंने यहां पर साकार किया है।
6: बिग न्यूज कमिंग आउट ऑफ द 10K, गुलवीर सिंह हैज रेप्लिकेटेड हिज CWG फॉर्म, हैज वन अ सिल्वर इन द एशियन गेम्स फॉर इंडिया।
0: सुजीत कलकल, गुलवीर सिंह, वो तमाम खिलाड़ी और वो तमाम पल जो 19 तारीख से शुरू हुए इस पूरे आयोजन में लगातार सुर्खियों में रहे और एक के बाद एक अपने पदक से, अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया। दो हफ्ते से अधिक चले इस आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों ने हर मैदान पर अपना दमखम दिखाया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया।
7: The Indian contingent. But let's talk about the Indian contingent. There was fantastic performances in boxing. 3 gold medals in boxing at this edition of the Asian Games.
8: Yeah, carrying forward their form from the Commonwealth Games. Lovlina, Ankush, Parveen Huda are 3 gold medal winners.
9: Teerandazi, mukkebazi aur athletics mein shandar pradarshan tatha cricket, hockey aur kabaddi mein 2-2 swarn padak jeetne ki badolat Bharat ne Japan Asiai khelon ka abhiyan padak talika mein chauthe sthan ke saath samaapt किया। ये पदकों की दृष्टि से भारत का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2023 चीन के हांगझाऊ में भारत ने 106 पदक जीते थे। एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रैक एंड फील्ड पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 24 पदक जीते। निशानेबाज और तीरंदाजों ने भारत के लिए कई अहम पदकों पर निशाने साधे। निशानेबाजी में 3 स्वर्ण समेत 15 पदक और तीरंदाजी में 5 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते भारतीय खिलाड़ियों ने। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। कुश्ती में अमन शहरावत और सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही टीम खेलों में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। जापान में कई भारतीय खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड और ऐतिहासिक उपलब्धियां भी दर्ज की। 17 वर्षीय कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कुमकुम ने अंकिता और कीर्ति शर्मा के साथ महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में इन खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में

0: विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया, साथ ही नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में 56 साल और सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर में 16 साल के पदक के सूखे को समाप्त किया। बारानिका एंग्लागोवन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पोल वॉल्ट खिलाड़ी बनी। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। भारत ने 1998 के बाद पहली बार भारोत्तोलन में पदक जीता। रोशिबीना देवी ने वुशु में लगातार तीसरा महाद्वीपीय पदक जीता। वहीं 18 वर्षीय अनहत सिंह ने एशियाई खेलों के स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर नया इतिहास रचा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो वो तमाम खिलाड़ी जो पहले दिन से लेकर आज तक इस खेल की सुर्खियां रहे, हर मैदान को जीतने के साहस के साथ मैदान पे उतरे, और अब इस पूरे खेल आयोजन पे और अधिक अपडेट के साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष मौजूद है स्टूडियो में। विशेष, खेल के मैदान में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है? तो भारत की ये तादाद, हालांकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, लेकिन कितना भारी पड़ा ये खिलाड़ियों का शानदार खेल।
2: शक्ति, अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें तो बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है, लेकिन अगर हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 से अगर तुलना करें तो भारत ने इस बार 85 पदक जीते हैं और तब 106 पदक अपने नाम किए थे। लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा कि 2023 में भारत की ओर से 650 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 499 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में हिस्सा लिया। तो अगर औसतन प्रदर्शन देखें तो इस बार का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन कुछ मायनों में पिछले बार से भी बेहतर रहा है, लेकिन उससे खास फैक्टर जो इस बार एशियन गेम्स में भारत के लिए निकल के आए, सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर क्या कहे जाए और किस तरह से नए खेलों ने भारत को नई उम्मीद दी है?
2: शक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि नए खेलों में भारत अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुराश, एमएमए, रोइंग, सेलिंग, वुशु और सेपक टकरा जैसे खेलों में पदक जीतकर भारत ने इन खेलों में अपनी एक नई पहचान बनाई है।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम जो अपने परंपरागत खेल जिसमें भारत की रीढ़ मानी जाती है, वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वहां तो बेहतर कर ही रही है, लेकिन साथ ही अपने बेहतर प्रदर्शन से नए दरवाजे खोल रही है पदक तालिका में ऊपर की ओर छलांग लगाने के लिए। आपने नए खेलों की बात की, इसी में एक खेल स्क्वाश रहा भारत के लिए काफी युवा खिलाड़ी अनाहत। इसके पहले जब चीन में एशियाई खेल हुए थे तो महज 14 वर्ष की आयु में वो भारत के लिए सबसे युवा पदक विजेता बनी थी। इस बार उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
2: बिल्कुल शक्ति, स्क्वाश में अनाहत सिंह का ये जो इवेंट रहा, ये पहला सीनियर इवेंट था उनका, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बेहतरीन प्रदर्शन किया वहां अभय सिंह ने, जिन्होंने मेन सिंगल्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, और इसके साथ साथ मेन, वुमेन और मिक्स टीम ने भी भारत ने कांस्य पदक जीता। तो स्क्वाश में कुल मिलाकर भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।
1: जी बिल्कुल, काफी कम उम्र की ये जूनियर विश्व चैंपियन खिलाड़ी जो बीते कुछ वर्षों से लगातार मिस्र की स्थापित चुनौती को ध्वस्त करने का काम करते आ रही है, ऐसा ही यहां पर किया। लेकिन अगर इस कैंपेन की बात होगी तो सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे मजबूत फैक्टर रहा एथलेटिक्स। भारतीय खिलाड़ियों ने कई वर्षों से कॉलम्स खाली थे, 50-50 साल से हमने उन इवेंट्स में पदक नहीं देखे थे, इस बार हमने ऐसे कई कीर्तिमानों को ध्वस्त होते हुए देखा।
2: बिल्कुल शक्ति, अगर हम चाइना, जापान और कोरिया की बात करें तो उनके सबसे ज्यादा मेडल आए हैं स्विमिंग में, लेकिन अगर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें तो एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा कुल 24 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज शामिल है। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर, 10000 मीटर और 1500 मीटर में पदक जीते, वहीं नीरज की गैर हाजिरी में यशवीर सिंह और रोहित यादव ने जो पदक दिलाए हैं भारत को, उससे काफी नई उम्मीदें मिली हैं भारत को कि जेवलिन थ्रो सिर्फ नीरज चोपड़ा पर टिका हुआ नहीं है। और खिलाड़ियों की बात करें शक्ति, तो सर्वेश कुशारे, मुरली श्रीशंकर, तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट में, तेजस्विन श्रीशंकर, विद्या रामराज जैसे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है।
1: जी बिल्कुल, आपने तेजस्विन श्रीशंकर की बात की, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी स्पर्धा खेलते हैं जो कह सकते हैं कि अगर एथलेटिक्स को सभी खेलों का क्वीन माना जाता है तो वो इस एथलेटिक्स की क्वीन है, सभी स्पर्धाओं को मिलाते हैं और जब भी मैदान पे उतरते हैं नई उम्मीद, नया जोश और नया जज्बा, यही है नए भारत की उम्मीदें। और ये तमाम खिलाड़ी जो आगे चल के और बड़े प्लेटफॉर्म पे और बड़े मंचों पे भारत के लिए पदक की

0: और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की नई उम्मीदों को खोलेंगे। और एशियाई खेलों के बाद अब बात क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबले में कल भारत को वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने नाबाद 162 रन की पारी खेलते हुए टीम के लिए जीत के दरवाजे खेले और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि भारत ने यह श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारत ने श्रृंखला की शुरुआत के दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो विशेष भारत के लिए हालांकि आखिरी मैच थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन जहां से भारत की नजर हर मैच भर रहा है, 2027 विश्व कप जो एकमात्र लक्ष्य है, कितना अपनी तैयारियों का आकलन करने में टीम सफल रही होगी इन तीन मुकाबलों में।
1: शक्ति, अगर इन तीन मुकाबलों में देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजी

0: नहीं होगी इन तीन मुकाबलों में। शक्ति, अगर इन तीन मुकाबलों में देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजी ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। हर मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे मुकाबले में रिकॉर्ड रन चेज भी करी भारत ने, और तीसरे मुकाबले में भी शुरुआत में दो विकेट जल्दी गिर जाने के बाद रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार साझेदारी करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उसके बाद केएल राहुल ने 129 रन की धमाकेदार पारी खेली और शानदार प्रदर्शन किया। यह वनडे क्रिकेट में आठवीं बार है शक्ति जब दोनों विकेटकीपर बल्लेबाजों ने एक दिवसीय मुकाबले में शतक लगाया हो। नमन धीर ने आखिरी में कुछ रन बनाकर भारत को और मजबूत स्थिति दी, लेकिन गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखें तो यह सीरीज हमारे लिए काफी निराशाजनक है, क्योंकि हर मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन जो है खराब रहा है।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि काफी औसत प्रदर्शन और काफी महंगे साबित होते हुए नजर आए भारतीय खिलाड़ी। और चाहे दूसरे मैच में 400 का स्कोर पार होना हो या फिर यहां पर 350 के ऊपर के लक्ष्य को डिफेंड ना कर पाना, भारतीय टीम जब वापस आकलन करेगी उन तमाम खेमों का जहां पे टीम को काम करने की जरूरत है तो कह सकते हैं कि इन पे नजर होगी। लेकिन दो खिलाड़ी जब भी भारतीय टीम एक दिवसीय मैच खेलती है तो सबकी नजर होती है रोको की जोड़ी पर। रोहित शर्मा और विराट कोहली कितना साबित करते हुए अपने आप को नजर आए?
0: शक्ति, रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर रहे हैं और इसमें कोई दोराई नहीं है कि वो अभी भी अच्छी फॉर्म में बरकरार हैं। रोहित शर्मा ने एक शतक लगाया, 92 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने भी एक मुकाबले में शतक जमाकर सबको ये बताया है कि वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं।
1: जी बिल्कुल, और दूसरे मुकाबले में शतक के बाद रोहित शर्मा का वो शानदार फिटनेस का संदेश देता हुआ सेलिब्रेशन जो काफी हद तक कह सकते हैं कि उनकी तैयारियों को बताता है। और अब घरेलू क्रिकेट की बात कर ली जाए जहां मुकेश कुमार के 6 और आकाशदीप के 3 विकेट की बदौलत रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। आज फाइनल और मुकाबले के चौथे और अंतिम दिन रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को 167 रन से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
3: There are countries who are emerging.
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता

0: परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fossil five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि एक क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक

0: को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने ITC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज

0: आज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान ने एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न। भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी और सायरा बानू की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है अमन।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने. संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले.

0: की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, फिल्म का नाम है इशारा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है माया।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है उपासना।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: जाना।
1: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी।

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: पैदल ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंपकर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक।
3: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम मेन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10 बज चुके हैं। आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार, आईची नागोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहाँ से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहाँ चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांजू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे, 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांजू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया।

0: पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया
0: मोना। 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से 4था स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें 11वें 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां 6ठा स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर 4था स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार 1 ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर

0: जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी। उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
0: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
1: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
0: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
1: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि

0: ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
1: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
0: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
1: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
0: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं है। खासतौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की दो टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहां सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं, और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
0: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
1: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार एक ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है, डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहां निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहां तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में, लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
0: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
1: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी, और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
0: ओना स्क्वाश में भी मेडल तो आया लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
1: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनहद सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती है और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही है। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
0: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि खेलों में काफी काम करने की जरूरत है।
1: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन

0: खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर हैं और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहां पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहां बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: उन्होंने स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। गाते गुनगुनाते हुए फिल्म संगीत का आगाज हमने किया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं संगीत आरडी बर्मन का। फिल्म है हम किसी से कम नहीं।

फिल्म से गीत का अगला गीत आप सुनेंगे साधना सरगम की आवाज में। प्रकाश मेहरा के बोल हैं, संगीत बप्पे लहरी का। फिल्म है दाता।

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की है। ओपी नैयर का संगीत है, एसएच बिहारी के बोल हैं।

अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है खिलौना।

आपने टून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिए आप लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है सौतन की बेटी।

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे दो रास्ते फिल्म से। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की ही आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत एसडी बर्मन का, फिल्म है गाइड।

0: गाते गुनगुनाते हुए फिल्म संगीत का अंतिम गीत आप सुनेंगे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आरडी बर्मन का, फिल्म है अलग अलग।
1: बहुत दूर आसमान पर रहता है एक

लता मंगेशकर की आवाज में गाये इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं थमता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: रियली इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला।

0: जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे आज की परिचयन सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।